ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि। तदनुसार 4 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: छह बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार 6:02 पर कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में समाचार 7:02 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 बजे हिंदी में समाचार 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार 11:02 पर बॉलीवुड की अपडेट्स और गानों के साथ लेकर आएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। 12 बजे हिंदी में समाचार 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल। 1 बजे हिंदी में समाचार 1:02 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा मेरा वाला सॉन्ग। 2 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम आशियाना और 3 बजे सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। पेश है अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का सोमवार को तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के छह दिन के दौरे पर रवाना होने का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा के लिए कल बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फ्रांस के वित्त मंत्री रोलन लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की भी

सह अध्यक्षता की। इसी बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। इस साल की पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। अगर बात करें मौसम की तो मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और काबो वर्डे 2-2 गोल से बराबरी पर हैं। अगर बात करें विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता की तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

हर सुबह नई रोशनी नया ख्वाब लाती है, सपनों को पूरा करने की एक नई राह दिखाती है। इसी के साथ आइए हम भी सुबह के साथ शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। सुबह के 6:06 और ठीक 55 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 कार्यक्रम सुप्रभात। गलतियां जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। अब तक आपने सुना होगा कि गलतियां गलत हैं, उनसे अपराध बोध आपको होता है, लेकिन गलतियां बहुत जरूरी हैं। और वो क्यों? क्योंकि ये असफलता नहीं बल्कि सीखने की सीढ़ी है। हर गलती आपको बताती है कि क्या सही है, क्या तरीका सही है, कहां आपने गलत किया है, उसको ठीक करना है। तो चलिए इसी विचार के साथ अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ें और कार्यक्रम की शुरुआत में एक और सुंदर सा गीत आपके लिए पेश करें।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात शालिनी के साथ। गलतियां जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। गलतियों को सुधारने से आपका अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ता है, नया दृष्टिकोण मिलता है। गलतियां जो हैं वो लीक से हटकर नए रास्ते खोजने पर मजबूर करती हैं आपको। तो गलतियां गलत नहीं हैं, आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। इसी के साथ आइए अगला गीत आपके लिए पेश करते हैं। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

गलतियां ही तो सिखाती हैं जीने का असली सलीका। बिना गिरे साइकिल चलाना भला किसने है सीखा। तो हंसो अपनी नादानियों पर, दिल को थोड़ा ढीला छोड़ो। परफेक्ट बनने के चक्कर में मुस्कुराना मत छोड़ो। बहुत खूब कहा है किसी ने, है कि नहीं, है ना? आप सुन रहे आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर कार्यक्रम सुप्रभात। आपके साथ हूँ मैं शालिनी। गलतियों के जो अनुभव हमें मिलते हैं ना, वो किसी भी किताब या क्लासरूम में नहीं मिलते। ये आपको आपकी कमजोरियों और क्षमताओं को बेहतर ढंग से बताती हैं, उन्हें पहचानना सिखाती हैं। कई महान आविष्कार और उनके समाधान जो हैं, अनजाने में ही हुई गलतियों का या प्रयोगों का ही परिणाम हुए थे। तो गलतियां करने से डरिए नहीं, उनसे सीखिए। वो आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं, आपकी बहुत ही बड़ी शिक्षक हैं वो, ठीक है? तो डरिए नहीं गलतियों से, गलतियाँ अच्छी हैं।

वो क्लास में गलती से मैडम को मम्मी कह देना और फिर पूरी क्लास का जोर जोर से ठहाके लगाना, वो नमक की जगह चाय में शक्कर की जगह नमक डालना और पापा का वो घूंट पीकर गुस्से में आंखें निकालना, है ना, क्या खूब कहा है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ना आपका जीवन जो है वो खुशी से भर जाता है, उसमें अलग अलग रंग होते हैं और इन्हीं रंगों से आपका जो है वो जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ज़रूरी हैं, गलतियाँ ज़रूरी हैं पर उन्हें दोहराएं नहीं। ये गलतियाँ आपको असफलता के डर से, जो उनका डर होता है उसको दूर भगाती हैं और बड़े कदम उठाने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। इन गलतियों को दोहराएं नहीं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें, यह आपको ज़िंदगी का तजुर्बा देती हैं। और सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आप किसी गलती से अगर कुछ ना सीखें तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी किसी गलती से किसी दूसरे को कष्ट या नुकसान ना पहुँचे, बस इतना ख्याल रखिएगा। अपनी बेहतरी के लिए काम करते रहिए और गलतियाँ करते रहिए और उनसे सीखते रहिए, क्योंकि गलतियाँ बहुत ज़रूरी हैं, गलतियाँ अच्छी हैं। फिलहाल अब इजाज़त दीजिए क्योंकि चलने का वक्त हो गया है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे थे आप, मैं हूँ आपके साथ शालिनी। चलते चलते आपके लिए ये एक और बेहतरीन गीत।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम चर्चा करते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय में, जहां पर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान की सृष्टि लीला के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देने से पहले भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और वो बड़ी ही सुंदर स्तुतियां हैं। इन स्तुतियों पर ही हम चर्चा करते चले आ रहे हैं आज 18वें नंबर।

श्लोक में बहुत सुंदर एक और स्तुति कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की। बहुत ही सुंदर स्तुति है, कह रहे हैं, किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यमुना खसा दया ये अन्य चा पापा यदुपाशयाशया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णुवे नमः। आहा, देखिए ये ऐसे ऐसे श्लोक हैं और ऐसी स्तुति है जहाँ भगवान की महिमा का वर्णन हुआ है। भगवान कैसे पतित पावन हैं, उनके जैसे पतित पावन ही कोई नहीं है। ठाकुर जी ही समस्त जीवों के एकमात्र आश्रय हैं, कारण हैं। समस्त जीवों को जिनका प्रेम प्राप्त करना चाहिए, उस प्रेम का एकमात्र विषय भगवान ही है, ये याद रखिए। तो भगवान के एक पतित पावन गुण का वर्णन कर रहे हैं और उस गुण को याद करते हुए बहुत भावुक होकर के सुखदेव गोस्वामी जी श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। कह रहे हैं, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यमन और खस आदि जातियां और दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है। देखिए, भगवान है पतित पावन, ये आपको कहा। जब कोई व्यक्ति, कोई जीव ऐसे कर्म करता है जो पाप से युक्त होते हैं, महापापी होता है, उसे मनुष्य योनि मिल गई मगर उसने इतने पाप किए, तो ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद फिर से कभी मनुष्य योनि मिल भी गई तो वो एक ऐसे वर्ण व्यवस्था का शिकार हो जाता है, वो एक ऐसी जगह जन्म लेता है जहां उसे अपने जन्म के कारण उसको सम्मान नहीं मिलता, अपमानित होना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो उसका जो प्रारब्ध है वो जन्म लेने का कारण होता है। क्योंकि देखिए, किसी भी जीव का अपने जन्म पर तो कोई नियंत्रण है नहीं ना। हम कहाँ जन्म लेंगे, किसके घर में जन्म लेंगे, किसी भक्त के घर में जन्म लेंगे या हम किसी विषयी भोगी के घर में जन्म लेंगे, हम किसी डकैत के घर में जन्म लेंगे, किसके घर में जन्म लेंगे, ये तो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। क्योंकि कर्म और फल, ये श्रृंखला तो बनी हुई है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो हम कहाँ आएंगे, तो अपने प्रारब्ध की वजह से हमने खास जगह जन्म लिया और उस जगह जन्म लेने के बाद हमें बहुत अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा, हमें लोगों की बातें भी सुननी पड़ी। तो किसी भी जगह जन्म क्यों ना लो, या ऐसे लोग जिन्होंने बहुत पाप किए हैं कर्म से, अभी उनके पाप इतने ज्यादा भयंकर हैं कि अगर उनका शरीर छूटा तो नरक जाना तय है, तो भी अगर ऐसे लोग भी, ऐसे सब लोग अगर भगवान के शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण कर लें तो बस उतने से ही वो पवित्र हो जाते हैं, उतने से ही वो पवित्र हो जाते हैं। अर्थात भगवान की जो भक्ति है वो हमारे समस्त प्रारब्ध कर्मों को नाश कर देती है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है, ये तो कभी सुना नहीं, ये तो अगर कभी सुना भी तो क्या यकीन किया। देखिए, हमने देखा है अपने जीवन में सब जगह ही कि जो भगवान के भक्त हैं उनसे कभी कोई ये नहीं पूछता कि तुम कहाँ पैदा हुए थे, तुम्हारा परिवार कैसा है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भजन करता है, जिसने भगवान के भक्तों की शरणागति ली है, सदगुरु जिसके जीवन में आए हैं,
और सदगुरु देव ने कृपा करके किसी को अपना

है, भजन मार्ग बताया है, भगवान के बारे में बताया है, भागवत भगवद गीता के बारे में बताया है। तो ऐसे सदगुरु जी के चरणों की शरणागति लेने के बाद कभी भी किसी को भी दोबारा से नरक नहीं जाना पड़ता, कभी भी कष्ट नहीं सहना पड़ता, वो पवित्र हो जाते हैं, यानी वो प्रणम में हो जाते हैं, वो सम्मानीय हो जाते हैं, वो पूजनीय हो जाते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही ज्यादा, है ना, क्योंकि अचानक अपने पापों से निवृत्ति प्राप्त करना अपने बल पर ये कभी संभव हो नहीं सकता है। कोई सोचे कि हम जो है कुछ ऐसा कर्म कर लें कि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाए, तो इतनी जल्दी पापों से मुक्ति मिलती नहीं है। ना जाने कितने पाप हैं, कैसे प्रारब्ध हैं, क्या किया है ना। लेकिन पाप आत्मा चाहे कितना भी निंदित क्यों ना हो, थोड़ी सी भक्ति का गंध अगर उसमें हो, लेश मात्र भी अगर उसके अंदर भक्ति हो, तो वो कृतार्थ हो जाता है। यही यहां बता रहे हैं किरात इत्यादि श्लोक में कि जो व्यक्ति, पापी व्यक्ति, चाहे वो जन्म से कुछ ऐसी जगह पैदा हो गया हो, ऐसी जगह जहां पर सम्मान नहीं मिलता है, या फिर उसने कर्म ही ऐसे किए हैं जिसके कारण कोई उसका सम्मान नहीं करता, अगर वो ऐसे व्यक्ति की शरणागति ले ले जो भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण आश्रित हैं, तो वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। इसीलिए यहां कहा गया है यदुपाशयाश्रया, अर्थात जो भगवान के आश्रित वैष्णव गण हैं, वैष्णव गण यानी जो कृष्ण भक्त हैं, जो श्री राम के भक्त हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी के जीवन में श्री गुरु रूप में आते हैं, तो फिर वो समस्त पापों से पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु देव के श्री चरण का आश्रय करके ही या करने मात्र से ही समस्त पापी गण अपने हर प्रकार के प्रारब्ध से शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां कहा गया कि जो भक्ति देवी हैं, वो समस्त प्रारब्ध अप्रारब्ध समस्त प्रकार के पाप को नाश कर देती हैं। तो भक्ति देखिए कितनी महान है। भक्ति की गंध मात्र अगर किसी जीवात्मा में हो जाए किसी भक्त की कृपा से, क्योंकि भक्ति अपने आप नहीं मिलती, भक्ति मिलती है किसी भक्त की कृपा से, भक्त को माध्यम बनाकर ही भक्ति आती है, भक्त का हृदय ही भक्ति महारानी का वाहन है, उस हृदय में वो विराजती हैं और उस हृदय से वो बाकी समस्त लोगों में संक्रमित होती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है भक्तों का सामिप्य, भक्तों की शरणागति, भगवान के भक्तों की शरणागति, श्री कृष्ण के भक्तों की शरणागति, है ना। नहीं तो अगर ऐसा ना हो, यानी कोई भक्ति महारानी की कृपा ना ले, कोई भगवान के ऐसे सच्चे भक्तों के चरणों का आश्रय ना ले, सच्चे भक्तों का, सदगुरु का, यानी जो शास्त्रों के मर्म को जानते हो, जो भगवान की कथा कहते सुनते हुए अतिशय आनंदित होते हो, मत हो जाते हो, जो सदा सर्वदा सत से संबंध रखते हो, सत अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और अगर कोई और बात करनी हो तो वहां उनका आवेश ही ना जाता हो, तो ऐसे जो भक्त हैं अगर उनकी शरणागति ली तो भगवान कृपा करते हैं। भक्त की कृपा के पीछे पीछे ही भगवान की कृपा चलती है, ये हमें याद रखना होगा। भगवान की कृपा भक्त की कृपा को ही माध्यम बनाती है। तो अगर कोई सोचे कि नहीं, हम तो स्वतंत्र रूप से भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, गीता भागवत जी पढ़ रहे हैं, तो क्या हम शुद्ध नहीं होंगे, क्या हमारे समस्त प्रारब्ध खंडित नहीं होंगे, क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो उत्तर है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पूरे जीवन भर सोचता रहे, वो खूब हरिनाम ले, सब कुछ करे, लेकिन वो भगवान के ऐसे

प्रेमिक भक्तों का आश्रय ना ले, उनसे शिक्षा दीक्षा ना ले, तो फिर ये जो उसने भजन किया ये उसकी इस प्रकार की सुकृतियां पैदा कर देंगे कि वो इस जन्म में ना सही अगले जन्म में फिर से भजन प्रारंभ करेगा और उसे ऐसे सद्गुरुदेव अवश्य ही मिलेंगे जो उसे और आगे ले जाएंगे भगवान की तरफ। तो ये सुकृतियों को एकत्र करने का मात्र तरीका होगा, इससे प्रारब्ध खंडित नहीं होगा। प्रारब्ध खंडित होता है भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करने से, और उससे भी पहले भक्त चरण आश्रय से, है ना। देखिए हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो अर्चनीय श्री विष्णु हैं, शालिग्राम शिला हो गए, गिरिराज जी हो गए, इनमें अगर किसी की शिला बुद्धि हो जाए, श्री गुरुदेव में अगर किसी की मनुष्य मात्र बुद्धि हो जाए कि अरे वो तो साधारण इंसान थे, या श्री वैष्णव में अगर किसी की जाति बुद्धि हो जाए तो उसका पतन हो जाता है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो अर्थात शालिग्राम शिला आदि को साक्षात भगवत स्वरूप समझना होगा। वो साक्षात भगवान है भी, समझना होने की क्या बात है, हैं ही। श्री गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। कैसे श्री गुरुदेव, आपको बताया, जो शास्त्रों में पूर्ण रूपेण डूबे हुए हो, जिन्हें भगवत अनुभव हो गया हो, जो भगवान के संबंध के बिना एक पल ना रहते हो, अव्यर्थ कालत्वम यानी भगवान के नाम का जप, भगवान की लीला का श्रवण स्मरण, भगवान से संबंधित कार्य में सुबह से लेकर रात तक लगे रहें, ऐसे श्री गुरुदेव सद्गुरुदेव हैं, है ना। तो उनमें अगर कोई मनुष्य बुद्धि कर लेता है तो उसकी कभी सिद्धि नहीं होती, वो कभी आगे नहीं जा सकता। और या किसी वैष्णव में जाति बुद्धि कर ले, आप कौन सी जाति के हैं, कहाँ पैदा हुए, क्या परिवार था, तो भी उसका पतन हो जाएगा। वैष्णवों में जाति बुद्धि करना यानी सीधा नरक का द्वार खुल जाना। इसीलिए यहां पर कहा गया कि देखिए कहीं पर भी शायद समानता मिले ना मिले, समानता हो ना हो इंसान इंसान के बीच में, लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त हो जाए और भगवान के प्रेमिक भक्त का आश्रय ले ले तो फिर वहां जाति आदि सब बेकार हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है भक्त के माध्यम से, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, यानी उसे भगवत नाम प्राप्त होता है श्री गुरुदेव के द्वारा, उसे गोपाल मंत्र, गोपाल गायत्री, काम गायत्री आदि की प्राप्ति होती है। तो उस समय दीक्षा लेते ही उसका जो गोत्र है वो अच्युत गोत्र हो जाता है। फिर उसका जो जन्म का गोत्र है, जन्म की जाति है, वो सब पीछे चली जाती है, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि वैष्णव बुद्धि यानी वैष्णव पूजनीय है। वैष्णव क्या है, पूजनीय है। वहां जाति बुद्धि की निषेध है, वहां आप कभी भी उनसे जाति नहीं पूछ सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जहां पर अगर कोई उनका प्रेमिक भक्त है, यानी ठाकुर जी को शरणागत अगर कोई प्रेमिक भक्त है उनका, अगर कोई उसकी शरण ग्रहण कर ले प्रेमिक भक्त की, तो फिर भगवान उस पर कृपा अवश्य ही करते हैं। तो ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं कि साक्षात भगवान तो कृपा करते ही हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को माध्यम बनाकर ज्यादा बड़ी कृपा कर पाते हैं। क्योंकि भगवान तो स्वयं आएंगे नहीं ना अपनी कथा सुनाने के लिए, भगवान तो स्वयं आकर दीक्षा देते नहीं है। क्योंकि जो साक्षात स्वयं भगवान है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो श्रीमन महाप्रभु हो, जो स्वयं भगवान है वो कभी किसी जीवात्मा को दीक्षा नहीं देते, वो अपने भक्तों के माध्यम से ही दीक्षा दिलवाते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं, स्वयं शिक्षा दे सकते हैं आचरण के द्वारा, लीला के द्वारा, लेकिन स्वयं वो ये आचरण करके दिखाते हैं कि हमने भी किसी महत का आश्रय ग्रहण किया है, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आश्रय ग्रहण किया श्री ईश्वरपुरी पाद जी का। तो ईश्वरपुरी जी भगवान

0: कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव थे। तो महाप्रभु ने तो ये लीला करके दिखाई कि भाई बिना आश्रय के भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और यहां पर यही बात कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय के बहुत ही सुंदर श्लोक पर, 18वां श्लोक। किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया ये अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। बहुत सुंदर श्लोक है और इसका जो अर्थ है वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, सर्वशक्तिमान भगवान। कह रहे हैं कि किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन और खस आदि जितनी जातियां हैं और दूसरे पापी लोग जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। तो देखिए, तो भगवान की महिमा ही है, क्योंकि भक्त तो भगवान को चाहते हैं और भगवान भी भक्त को ही प्रेम करते हैं और भक्तों के हृदय में ही भगवान का सतत निवास होता है। भक्तों के हृदय में ही भगवान सदा विराजमान होते हैं। यद गायन्ति मद भक्ता, भगवान कहते हैं जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारदः, मैं वहाँ ही रहता हूँ, उन्हीं के हृदय में ही रहता हूँ। तो भक्तों के हृदय में तो भगवान का आराम स्थल है, विश्राम स्थल है। बाकी तो जितने भी लोग हैं उनके हृदय में तो कामनाओं और वासनाओं रूपी कीचड़ के कारण भगवान वहाँ कहाँ ठहर सकते हैं, नहीं ठहर पाते हैं, है ना। हालांकि परमात्मा के रूप में तो सबके हृदय में ही हैं, लेकिन स्वयं भगवान, लीलामय भगवान ठाकुर जी अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। तो इसीलिए ऐसे भक्तों की कृपा अगर कोई लेता है तो वो भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर जाता है, भक्त कृपा की वजह से। तो बहुत सुंदर बात है ये। और ये जो भक्त कृपा है ना, ये बहुत ज़रूरी है प्राप्त करना, बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर कोई सोचे कि भक्त कृपा की इतनी ही क्या ज़रूरत है, हम अगर स्वयं भजन कर लें तो क्या नहीं हो सकता है, तो उत्तर है नहीं, नहीं हो सकता है। कोई कहे नहीं, देखिए हम तो बहुत उच्च जाति के हैं और हमारे तो परिवार में भी बहुत भजन होता आया है, लोग करते आए हैं भजन, सतकुल है। देखिए, अगर भजन करते आए हैं, उनका संस्कार मिला है, कृपा मिली है, तो भजन हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, हम तो बहुत उच्च जाति के हैं, सिर्फ जाति अभिमान के कारण कोई सोचे कि हम तो भजन कर पाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। हमारे शास्त्रों में हमारे ग्रंथकार कहते हैं, हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में जो श्री राधिका की नित्य दासी हैं, श्री कस्तूरी मंजरी जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे और उनका नाम था श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, वो कहते हैं नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र नहीं भजने योग्य। जेई भजे सेई बड़ो अभक्त हीन छार, कृष्ण भजे नाही जाति कुल आदि विचार। बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ नहीं पूछता कोई कृष्ण भजन में कि तुम कौन से कुल के हो, कौन से

तो इसलिए जो अभक्त हैं वो हीन हैं, वो छार हैं। कृष्ण भजन में जाति कुल आदि का विचार नहीं है, सब भजन कर सकते हैं, सब के सब, है ना। देखिए भगवान भी कहते हैं कि जो वैष्णव हो गया ना तो वो फिर कभी प्राकृत नहीं है। प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभू नहीं, अप्राकृत देह भक्तिर चिदानंदमय। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। से देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री राधा कृष्ण एकात्म स्वरूप है, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है ना, वो किसी के अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी हैं जिनसे सब प्रकट होते हैं। ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वही कहते हैं कि जो भक्तों के देह है वो प्राकृतिक नहीं है, वो दिख रही है हाड़ मास की, लेकिन वो चिदानंदमय स्वरूप है। क्योंकि जैसे ही एक भक्त को सदगुरु का चरण आश्रय करने से कृष्ण मंत्र मिलता है, गोपाल मंत्र मिलता है, ऐसे ही उसी समय श्री कृष्ण उसे अपना लेते हैं और वो फिर कृष्णमय हो जाता है, उसकी बुद्धि चिदानंदमय हो जाती है, श्री कृष्ण ऐसा कर देते हैं। तो जब वो भगवान का भजन करता है तो प्राकृतिक देह से नहीं करता है, उसकी देह सच्चिदानंदमय हो जाती है, अब प्राकृतिक हो जाती है। कितनी बड़ी बात है ना। इसीलिए श्री चैतन्य भागवत में व्यास जी के अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी भी कहते हैं, जेते कुले वैष्णवीर जन्म कहने नहे, तथापि हो सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे, जे पापिष्ठ वैष्णवेर जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म अधम योनि ते डूबी मरे। देखिए, यानी वैष्णव किसी भी कुल में क्यों ना पैदा हो, जैसे हरिदास ठाकुर जी यवन कुल में आए, है ना, यवन कुल में आए और वहां तो कोई भजन करता ही नहीं था, कौन भजन करेगा, लेकिन तो भी हरिदास ठाकुर जी ने खूब भजन किया। 300,000 नाम भगवान का लेते थे और श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं उन्हें अपना अधरामृत पवाते थे, उनके बड़े ही निकट थे भगवान, उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान भजन देखते हैं, भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। शरीर किस कुल में पैदा हुआ उस तरफ भगवान की दृष्टि नहीं है और उस तरफ भक्त की भी दृष्टि नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि जिस भी कुल में क्यों ना वैष्णव पैदा हो मगर वो सर्वोत्तम ही है। सारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, सर्वोत्तम है, सब में उत्तम है, सब में उत्तम। यानी विप्र कुल में किसी ने जन्म लिया हो ब्राह्मण कुल में, उनसे भी उत्तम हो गया क्या? हाँ जी, बिल्कुल उत्तम हो गया। जैसे ही उसने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया और उसने सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर भजन करना प्रारंभ किया, वैसे ही वो उत्तम हो गया। तो जो वैष्णवों में जाति बुद्धि करता है तो उसको हमारे शास्त्र कहते हैं वो पापी है, पापी। तो फिर उसका क्या होगा? अगर वो पापी है तो उस पापी का क्या होगा? तो बता रहे हैं जन्म जन्म वो अधम योनियों में जाएगा, जन्म जन्म उसे मनुष्य जीवन ही प्राप्त नहीं होगा, जहां भजन करने का एक सुयोग एक अवसर प्राप्त हो ऐसा होगा ही नहीं। तो भक्त जीवन अगर कोई प्राप्त करता है तो पहले 64 भक्ति के साधनों में सबसे पहले उसे मुख्य भक्ति अंग श्री गुरुपाद पद्माश्रय करना होता है। और फिर से आपको गुरुदेव के लक्षण बताए, गुरुदेव कभी नहीं कहेंगे मैं भगवान हूं, गुरुदेव कभी नहीं कहेंगे गीता भागवत छोड़ो हटाओ किसी ने लिख दी होगी, कभी नहीं कहेंगे सदगुरुदेव, कभी भी नहीं कहेंगे। क्योंकि भगवद गीता श्रीमद भागवतम ये तो प्रेम ग्रंथ हैं, जो उनका अध्ययन करेंगे उन्हें प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी ही, है ना। तो अगर कोई भगवान के भक्तों की शरणागति नहीं लेगा तो वो चाहे कितना भी भगवत कथा का श्रवण कर ले, कीर्तन कर ले, लीला स्मरण कर ले, उससे वो अपने प्रारब्ध से नहीं निपट पाएगा। हाँ, उसकी इतनी सुकृतियां अवश्य ही संचित हो जाएंगी कि फिर कभी किसी जन्म में वो अवश्य ही भगवत भक्त का आश्रय लेगा, मगर आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। आश्रय लैया जे भजे कृष्ण तारे नाहीं।

जय आर सभी मरे अकारणे। जो आशय लेकर भगवान का भजन करता है, यानी भक्तों का आशय लेकर भगवान का भजन करता है, तो फिर भगवान उसका त्याग कभी नहीं करते हैं। बाकी लोग अगर भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं लेते हैं और साक्षात भगवान की तरफ मुड़ना चाहते हैं, तो मैं तो नहीं कह रही हूँ, पर हमारे शास्त्र ऐसा कह रहे हैं कि वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। तो बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी, जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

नमस्कार, आप बने हुए हैं रेनबो स्टेशन के साथ और लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होने का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। सरकार ने दोहराया कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकणा, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश

की संभावना व्यक्त की गई है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में हुए एक रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

हीरा, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पंक्तियां हैं ना, ये जामवंत जी ने हनुमान जी को बताई थी उनकी शक्तियां उन्हें याद दिलाने के लिए। अगर ये बात आपको एक्साइटेड कर रही है सुनने में, तो इसको प्लीज जरूर सर्च करना कि इन पंक्तियों का ना मतलब क्या है। वो दिखा रहे थे हनुमान जी को, भाई आप कोई आम वानर नहीं है, आप एक बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही शूरवीर हैं जो स्थिर रह सकते हैं। अगर आसपास शोर है तो भी आप नर्म रह सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारा तेज है। आपने बचपन में क्या क्या किया था, भाई सूर्य निगल लिया था। खैर बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इन पंक्तियों का मतलब जानेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेनबो स्टेशन, म्यूजिकली योर्स 102.6 पर प्रोग्राम शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग दिल्ली विद योर आरजे खुशी। वीकेंड स्टार्ट हो गया है और आज आ गई है 4 जुलाई, जो इतिहास में मुख्य रूप से कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर भारतीय सेना की विजय और महान संत स्वामी विवेकानंद जी की महासमाधि के दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब मैंने ये पढ़ा था ना कि भाई कारगिल युद्ध और टाइगर हिल पर भारतीय सेना की आज विजय का दिवस है, तो फिर तब ये गाना मुझे याद आया और मैंने आप सभी सभी लिसनर्स को सुना दिया। आज का ये दिन और किन किन बातों के लिए जाना जाता है, किन महान हस्तियों का आज है हैप्पी हैप्पी बर्थडे, स्पोर्ट्स के अपडेट भी, और ये सब कुछ यहीं मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो विद योर आरजे खुशी।

0: This track was from the movie Dil Jungli और ये गाना आप सुन रहे थे रेनबो स्टेशन 102.6 पर। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव्स की सफलता, उनके योगदान और सहकारिता के मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अब आपकी भी थोड़ी सी मैं जागरूकता बढ़ा देती हूँ, आपकी जर्नल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो सहकारिता है ये मुख्य रूप से किन सात सिद्धांतों पर काम करती है। ये है स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना, सहकारी समितियों के बीच सहयोग और समुदाय के प्रति चिंता, जो कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से ब्रेक के बाद।
1: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।

अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप बने हुए रेनबो स्टेशन 102.6 में आरजे खुशी के साथ, जहां प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली। और आज है 4th of July, और 4th of July को जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनमें है गुलजारी लाल नंदा जी, जो कि भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। साथ ही अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, उन्हें मन्यम विरुडू यानी कि जंगल के नायक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी वन कानूनों और नीतियों के खिलाफ आदिवासी समुदायों को एकजुट किया, और 1922 से लेकर 1924 में प्रसिद्ध

आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के दिन जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया उनमें है अम्मू स्वामीनाथन, जो कि भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थे। भरत व्यास, जो कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार रहे। पिंगली वेंकैया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक थे। साथ ही 4 जुलाई के दिन ही महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ली थी।

0: बेसिक रूल है, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र मनाना चाहिए और हमेशा ही ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन किन महान हस्तियों के साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बताती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, तो स्टे ट्यून।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वादी, दिल भी तेरा हम भी तेरे, संपूर्ण रामायण, फूल भरे अंगारे, ऐसी काफी सारी मूवीज में इन्होंने काम किया। साथ ही आज जन्मदिन है चिराग शेट्टी का। अगर आप जानते हैं और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। तो चिराग शेट्टी, सुशील कुमार जी को और आज जिन जिन का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से ब्रेक के बाद।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मुझे खुशी यानी मेरे जाने का टाइम आ गया है, और जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का ही कोट आप सभी को बताना चाहूंगी कि लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, लोग कहते हैं उस पर विश्वास करो, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि खुद पर विश्वास करो, क्योंकि सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं। इसी विचार के साथ आरजे खुशी को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, खुश रखिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली प्रोग्राम करने शालिनी आ गई हैं, उसको कंटिन्यू करेंगी, और मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 दिल के तराने गाने नए पुराने में।

0: વાણી આકાશવાણી
1: चाय के कप से उठते हुए धुएं से आपकी शक्ल नज़र आती है, ऐसे खो जाते हैं ख्यालों में कि चाय ठंडी हो जाती है। मैं क्या जी, अगर आप ना नींद में सोते हुए ऐसी ऐसी चारियां बना रहे हैं ना, तो उठ जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि चाय ठंडी हो ना हो लेकिन आप पर ठंडा पानी आकर पड़े और आपकी नींद बहुत ही ख़राब तरीके से खुले, तो उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। मैं क्या जी, सोने मकड़ो की हाल चाल है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, सुन रहे हैं आप मेरे यानी शालिनी के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। स्टे ट्यून्ड।

अब इतनी शिद्दत से इबादत करेंगे तो हमें तो आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? मेगा जी नमस्कार, सत श्री अकाल, ते बड्डा वाला हेलो मेगा जी। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी शालिनी। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए और पसीने में नहाते हुए ये तो नहीं सोच रहे हैं कि चलो नहा तो लिया ही है, अब क्या करना है, हम घर जाकर पानी क्यों बर्बाद करना है, लेकिन आपका तो ठीक है, पानी बचा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का क्या है, उनका भी तो ख्याल कीजिए इतनी गर्मी में। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए इसी बेहतरीन से विचार के बाद आपके लिए एक बेहतरीन सा ट्रैक चला देती हूँ, और उसके बाद बहुत ही काम की बातें होने वाली हैं यहाँ पर, आपके फायदे की बातें, तो सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट सिटी हैपनिंग्स और न्यूज अपडेट्स आपके लिए लेकर आऊंगी मैं थोड़ी देर में। सो स्टे ट्यून्ड, आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप।

हाय हाय, बस करिए, इतना क्या संवारेंगे आप अपने आप को? शीशा साथ में लेकर जाएंगे क्या? चलिए चलिए, तैयार हो जाइए जल्दी से, ऑफिस के लिए लेट हो रही हैं आप। चलिए, मैं क्या चीज सोने मकड़ो, स्वागत एक बार फिर से आपका आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सुन रहे हैं शो गुड मॉर्निंग टेलियंस यार, आपके साथ हूँ मैं, कौन, शालिनी कहते हैं मुझे। और मैं अब क्या कहती हूँ वो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ईवी खरीदने की पॉलिसी ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं ना, तो पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताने वाली, जबान कभी कभी फिसल जाती है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। चलिए, दिल्ली सरकार ने ना राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहन जो है ना ईवी को उनको बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी कि ईवी पॉलिसी 2026-2030 को मंजूरी दे दी है। और ये जो है 1 जुलाई से लागू होने की संभावना नहीं, पूरी पूरी बात तय हो चुकी है, 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। और इस नीति के तहत ना 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। और इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। ये तो न्यूज़ है, मैं क्या करूँ, मुझे तो पता नहीं पड़ता है ना, जैसा है वैसा है। तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि है ये क्या बात हुई, बताइए जरा, ये बैटरी से तो हम खिलौने चलाए करते थे, अब गाड़ियाँ भी बैटरी से चलेंगी, है ये क्या बात हुई जरा। जब तक पेट्रोल डीजल वाले इंजन की आवाज़ ना आए तब तक दिल हमारा ठीक से धड़कता ही नहीं, बताइए।

0: कैसी आदत डालेंगे हम?
1: तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब यही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल मैं आपके लिए गाना चला सकती हूँ, ताकि आपके दिल की धड़कन ना थोड़ी सी मध्यम मध्यम, शांत शांत, हौले हौले चले।

0: बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर।

0: दो बजे रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: तो मैं आपको बता दूं कि सोने का टाइम ना खत्म हो गया है, क्योंकि आपको उठाने आ गए हम। तभी तो कहते हैं इसे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, शो का नाम है और मेरा नाम है शालिनी और चैनल का नाम तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं हूं ना, बता रही हूं मैं आपको, चिंता किस बात की है। आकाशवाणी ग्रीन वे 102.6 सुन रहे हैं आप मेरे यानी शालिनी के साथ, और शो का नाम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अब रिपीट नहीं करूंगी। एक दुखियारे इंसान की जो गुहार है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या है कि एक व्यक्ति जो है ईपीएफओ के ऑफिस गया और वहां पर काउंटर पे जाके उन्होंने कहा कि
1: ऐसे नहीं भाई साहब, ये 5 बार में ओटीपी डाल देता हूँ मैं, 6ठी बार मांग रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी जो आपने लगा रखी है, हैकर्स की बात दूर की है, कर्मचारी तक अपना पीएफ नहीं निकाल पाएंगे, बताइए ये कोई बात हुई?
0: तो आपकी इसी तरह की समस्याओं को ना ठीक करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, वो उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। और कर्मचारियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया में जो किए गए काफी सारे बदलाव और नई सुविधाएं इसमें शामिल हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि संगठन के नए डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम में कर्मचारी की संपूर्ण नौकरी की अवधि और स्थान का पूरा विवरण दर्ज होगा, और साथ ही पीएफ राशि निकालने के लिए कहीं से भी आवेदन कर सकेंगे आप। इसके अलावा 75% तक राशि निकालने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो अब रोना बंद कीजिए और गाना गुनगुनाइए।

बिल्कुल आपकी खैरियत पूछने के लिए आ गए हम यहाँ पर एक बार फिर से। शालिनी कहते हैं मुझे, और आपको क्या कहते हैं ये तो आप जानते होंगे। आकाशवाणी रेनबो 102.6 कहते हैं इस चैनल को, और चल रहा है शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आपकी खैरियत पूछने के बाद ना यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में क्या क्या हो रहा है आपको ये भी बता देते हैं, ताकि आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएं। तो फिलहाल आपके लिए जो एक खबर है बहुत ही बेहतरीन है, वो ये है कि दिल्ली एनसीआर में अगले एक दशक के दौरान ना शहरी यातायात का जो स्वरूप है पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे? एनसीआर में जो प्लानिंग बोर्ड ने ना वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक दूरदर्शी योजना तैयार की, और उसके तहत ना भविष्य में ऊंची इमारतों की छतों पर एयर टैक्सी उतारने की तैयारी हो रही है। तो कब से आप इस बात के लिए जो है सपने ही देख रहे थे ना, तो वो सपना आपका पूरा होने वाला है। और इस योजना के तहत ना ऊंची इमारतों की छतों पर जो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि UAV का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में साल 2030 तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ड्रोन सुविधाएं, हेलीपैड और UAV के लिए लॉन्च और पार्किंग एरिया अनिवार्य रूप से बनाने की सिफारिश कर दी है। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एयर टैक्सी के सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए ना विशेष प्रकार के स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिन्हें वर्टिपोर्ट कहा जाता है। और एनसीआर के प्रमुख रेलवे स्टेशंस और बड़े ट्रांसपोर्ट हब की छतों पर ये विकसित होंगे। यात्री बस या ट्रेन से उतरकर सीधे छत पर जाकर एयर टैक्सी पकड़ सकेंगे। मैं क्या जी, बल्ले बल्ले है थोड़ी तो है। तो इस खबर को सुनने के बाद ना मैं भी अपने ख्यालों में खो गई थी, और ख्यालों में खोते खोते मैं सपनों में ही चली गई थी। तो मैं उस एयर टैक्सी के ड्राइवर से बोल रही थी कि भैया थोड़ा धीरे चला लो ना। तो बोले कि मैडम डरिए मत, क्योंकि इससे पहले तो मैं ऑटो चलाता था, अब यहाँ तो गड्ढों की भी कोई परेशानी नहीं था, आप क्यों घबरा रही हैं, मैं आराम से चलाऊंगा, डोंट यू वरी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, अब तो मैं हवा में हूँ, कुछ कर भी नहीं सकती। चलिए फिलहाल मैं आपके लिए गाना चला सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सपने से बाहर आ चुकी हूँ। ठीक है, आप भी आ जाइए। गुड मॉर्निंग।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे

हृदय तक कोई शक नहीं है गया कि आपका हमसे रब्ता है और हमारा आपसे रब्ता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही लंबा वास्ता है। मैं गया जी, स्वागत है एक बार फिर से आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आपके साथ हूँ मैं शालिनी और आप सुन रहे हैं

मॉर्निंग डेली एनसीआर 102.6 पर फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए और कानों को थोड़ा पास लाइए रेडियो अपने सेट के. और मैं आपको एक बेहतरीन सी न्यूज़ बताने वाली हूँ अब, और वो ये कि अगर आप सड़क पर चलते फिरते कूड़ा फेंकने के आदी हैं ना, तो आपके लिए है ये न्यूज़. नगर निगम की जो टीमें हैं ना, वो खुले में कूड़ा फैलाने वालों को, गुरुग्राम की बात कर रही हूँ मैं, ये उनके ऊपर ना 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. और इसमें नगर निगम के सभी आयुक्तों ने खुद अपने अपने क्षेत्रों में ज़मीन पर उतर कर ये निरीक्षण किया है और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसा रुख अपनाया गया है. तो अधिकारी को प्रत्येक हफ्ते कम से कम 15 चालान करने का अनिवार्य लक्ष्य दिया गया है ताकि लापरवाही बरतने वालों में डर बना रहे. तो आप जो केले के छिलके फैला देते हैं ना, उनसे बचकर रहिएगा, क्योंकि ये आपको 75,000 रुपये के पड़ सकते हैं. और साथ में अगर आपका पैर उन पर पड़ गया ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे और हॉस्पिटल का खर्चा आएगा वो अलग से. तो फिर ख्याल रखें तो गाना सुनी जाएंगे.

0: बस बस बारिशों की बात तो बस कहानियों में ही हमको नजर आ सकती है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर हमें बारिश होती तो नजर आ नहीं रही अभी, तो कहानियां सुन लेते हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो कहानी नहीं, एक सच्ची बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि वायु प्रदूषण की चुनौती से राजधानी में निपटने के लिए, प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रदेश सरकार जो है वो स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। और ये पर्यावरण विभाग की एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय परियोजना है जिसे विश्व बैंक सहित अन्य संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो सितम्बर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल 6,300 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। तो ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है आपके लिए, वो इसकी तैयारी की जा रही है। तो इसका उद्देश्य जो है वो दिल्ली में वायु प्रदूषण के जोखिम को कम से कम करना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देना है। तो फिलहाल सिर्फ सरकारें इस बात में काम नहीं कर रही हैं, हमारे जो आम जन हैं, लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और वो कैसे कि शादी में आजकल जो दुल्हन है ना, वो जैसे उनको गिफ्ट दिए जाते हैं तो उसके तौर पर वो क्या कह रहे हैं कि
1: सुनिए जी, मुझे ना अंगूठी मत दीजिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ना मुझे एयर प्योरीफायर दे दीजिएगा और मास्क दे दीजिएगा, उससे काम चला लूंगी मैं। अगर हमें भी तो अपनी दिल्ली का ख्याल रखना है कि नहीं है जी।
0: चलिए फिलहाल मैं आपका ख्याल रखती हूँ और आपके लिए गाना चला देती हूँ, कश्मीर में कन्याकुमारी।

कश्मीर कन्याकुमारी के बात छोड़िए, क्योंकि फिलहाल दिल्ली की बात चल रही है। और दिल्ली की बात में मैं आपको बता दूं, एक बात और खास है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं, तो जो निम्न आय वर्ग वाले जो लोग हैं उनके लिए नोएडा एयरपोर्ट के पास ना छोटे और बजट फ्रेंडली प्लॉट्स की योजना जो है वो लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यमुना सिटी के 3 सेक्टर्स में प्लॉट निकाले जा सकते हैं और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जल्दी ही सस्ते खरीदने का जो मौका है ना वो आपको मिल सकता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि येडा की 40 वर्ग मीटर साइज के रिहायशी प्लॉटों की जो योजना है वो लाने की तैयारी जो तेज हो गई है। और यमुना सिटी के 3 सेक्टर्स में करीब 3,800 प्लॉटों पर चरणबद्ध तरीके से योजना शुरू होगी, जिसका एक्शन प्लान बनाने का काम पहले ही तेजी से शुरू हो चुका है। तो मैं क्या जी बधाइयां आपके होने वाले घर के लिए। यका बंगला बने न्यारा ना सही, एक छोटा सा घर हो प्यारा हमारा तुम्हारा। आपको बहुत बहुत बधाइयां, मेरे जाने का वक्त हो गया यहाँ से फिलहाल। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कहाँ पर लॉन्ग ड्राइव पर जाने की, तो मैंने आपके लिए इंतजाम कर दिया है। चलिए शालिनी फिलहाल आपसे लेती है इजाजत। मैं क्या जी ख्याल रखी तो गाना सुनी जाए। आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी शालिनी, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कितना बुलवाते हैं आप।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM रेनबो पर अब मेरी वाणी नहीं चलेगी क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है दिल के तराने गाने नए पुराने जहां आप सुनेंगे नॉन स्टॉप बॉलीवुड नंबर्स विद 3 क्लासिकल सॉन्ग्स फ्रॉम ओल्ड क्लासिक यानी रेनबो की ओल्ड एरी से अब सभी लिसनर्स के लिए मैं लेकर आऊंगी पुराने वाले गीत संगीत 7:30 9:30 और 10:15 यानी कि 9:15 AM 9:30 AM एंड 9:45 AM तो शुरू करते हैं बॉलीवुड का नॉन स्टॉप music.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, जहां आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट ट्रैक। और रेनबो की ओल्ड डायरी से गाना सुनाने से पहले आपको दिल्ली का तापमान बता देती हूं। आज का दिन ऐसा रहेगा कि 36 डिग्री टेम्परेचर तो रहेगा, लेकिन सूर्य देवता नहीं दिखाई देंगे। मतलब पूरी आशंका है कि आज तो सूर्य देवता के दर्शन नहीं होने वाले हैं। तो जो आपका कपड़े धोने का प्लान था ना, वो आप कल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि कल सूर्य देवता फिर भी चमकेंगे बादलों के साथ साथ, तो आपके कपड़े फिर भी धुले हुए जो हैं वो सूख सकते हैं। तो संडे और मंडे सूर्य देवता के साथ साथ थोड़े बहुत बादल बने रहेंगे, लेकिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे दिन ना सिर्फ बादल रहेंगे, वो काले भी हो जाएंगे। काले बादलों के साथ बिजली भी कड़केगी और बारिश होने की पूरी संभावना रहेगी। इनफैक्ट हो ही जाएगी, क्योंकि मानसून तो आ ही गया है। तो पूरे हफ्ते की बात करूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं पर भी अगर बाहर जाएं, अम्ब्रेला अपने साथ रखें, और चाहे तो रेनकोट भी रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टू व्हीलर्स वाले होते हैं ना, उनको परेशानी होती है। तो बेटर होता है कि अगर आप सर ढकें और पूरा अपना रेनकोट से कवर रहेंगे, विंडशीटर पहनेंगे तो आप कवर रहेंगे, आपको पुल के नीचे एक बार सारे टू व्हीलर्स खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेनबो की ओल्ड एरिया से आपके लिए गाना लेकर आई हूँ किशोर दा की आवाज में, फिल्म ज्वेल थीव से ये ब्यूटीफुल ट्रैक, क्योंकि स्टूडियो के घड़े में समय हो चुका है 9:15।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

के मोर बना दे। ये माल थोड़ा मवाली है, हर सेंटेंस में गाली है, ना बम बहना पटाखा है, ये लड़की पूरी दिवाली है।

आजकल के गानों को आप सांस लेने देते हैं और पुराने जमाने में चलते हैं। वैसे अब जो मैं आपको सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ ना, जो मैं लेकर आई हूँ रेनबो की ओल्ड डायरी से, वो एक गीत नहीं है, वो एक भजन है। भजन आप सुनेंगे ना मुकेश दा की आवाज में ये गाना और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्या बात होगी। फिल्म धर्म करम मूवी से ये ट्रैक आप सभी लिसनर्स के लिए।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

आ जाओ ना, ये आ गए हैं और अब आ गया है टाइम आपके साथ ये शेयर करने का कि कौन सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ रेनबो की ओल्ड डायरी से, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल अपना और प्रीत पराई लेकर आई हूँ आप सभी लिसनर्स के लिए ओनली ऑन 102.6। यही तो मज़ा आता है दिल के तराने गाने नए पुराने प्रोग्राम में। एक तरफ एक लेटेस्ट गाना चल रहा होता है, कोई नए गाने चल रहे होते हैं, और एक तरफ आ जाते हैं हमारे किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश दा, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी। सुनिए आप सभी ये ब्यूटिफुल संगीत।

रेनबो स्टेशन पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। हिमानी आ गई है स्टूडियो में विद द प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर, जो कि एक वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम है और ये आप सुनेंगे 10 से 11, 11 से 12 आपके साथ रहेंगे मनीष आजाद प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में, 12 से 1 आप सुनेंगे प्ले इट कूल हिमानी के साथ, 1 से 2 मेरा वाला सॉन्ग मनीष के साथ और 2 से 3 प्रोग्राम आशियाना कंचन कानन के साथ। और रेनबो स्टेशन पर प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा। आरजे खुशी के जाने का वक्त आ गया और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। इसी इंडिपेंडेंट विचार के साथ आरजे खुशी को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: Welcome back after the break, and it's almost 10:30, time to put out the next Hindi track of the show. And today we are featuring the invincible, the beautiful, the mesmerizing, and you can actually go on adding so many more adjectives before the name, Madhubala. She lit up the screen with her invincible presence. And she knew how to mesmerize her audiences. She knew how to face the camera. Born in Delhi, she moved to Mumbai with her family when she was just 8 years old. She began a career early as a minor and went on to work in films of all genres. Drama, horror, romance, comedy, crime musicals, she excelled in all of them. The track coming up next was one where she set the screen on fire and we just couldn't take our eyes away from her. Even for a second.

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाग कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रूकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति

सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अजी मैं क्या, आप सभी लोगों का बहुत बहुत बहुत सारा बड़ा वाला स्वागत है आपका बॉलीवुड ट्रेल्स के अंदर। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड की खबरें आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन एक काम की खबर आपके लिए दे देते हैं ताकि आप कुछ अच्छा अच्छा कर सकें, क्योंकि वैसे तो रोजाना आप कुछ काम अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन अब एक अच्छा काम करने के लिए आपके पास एक मौका है। साउथ दिल्ली के शेख सराय हॉस्पिटल के अंदर में एक निजी अस्पताल में अगर आप देखेंगे कि एक भर्ती रोगी को अति शीघ्र यानी कि बहुत जल्द 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। इच्छुक जो रक्तदान करता है, किसी भी ब्लड ग्रुप के हों, रक्तदान करने के सक्षम हों, आप जो मोबाइल नंबर आपको मैं बता रहा हूँ आप उस पर संपर्क करके एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर, प्लीज उसको नोट कीजिए 9810652903। एक बार नंबर आपको दोबारा बता देता हूं 9810652903। आपका रक्तदान जो है ना किसी की भी जान बचा सकता है, तो इसके लिए आप अपना एक रक्तदान कर सकते हैं। अगर आप उसके आसपास हैं तो जरूर कीजिएगा एक अच्छा अच्छा काम। तो चलिए साहब, इस अच्छे काम के साथ साथ एक अच्छा वाला शो यानी कि बॉलीवुड ट्रेल्स, जो आप सभी लोग कहते हैं ना कि माया नगरी की फिल्मी बातें, वहां की हलचल, ताजा खबरों के साथ आज का बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर हाजिर आपका दोस्त मनीष आजाद रेडियो वाला। तो सपनों की दुनिया में लेकर आपको चलते हैं और कराते हैं आपसे वहां की मुलाकात और रेडियो के माध्यम से कि आप वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ है देखा जाता है। वैसे देखिए सब लोग इधर उधर आते जाते हैं, आप भी कहीं जाते जाते हैं, अगर कल को आप ऐसे हीरो बन जाए तो आपको आपको एयरपोर्ट पे देखा गया था। देखा तो गया था, लेकिन भाई आप किसकी तरह नजर आ रहे थे ये कैसे पता चलेगा ऐसे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में आपका दोस्त मनीष आजाद रेडियो वाला।

तो भाई नाचे नाचे आप भी इसी तरह से नाचते रहे हैं। इस समय नाचने की जो बारी है, क्योंकि इस समय भाई जानवी कपूर जो है वो कहते हैं कि वो भी आजकल सातवें आसमान पर नाचने को तैयार हो रही हैं और तैयार भी हैं, क्यों ना हो भाई, क्योंकि उनकी जो फिल्म है, जो उनकी फिल्म अभी जो तेलुगु की भाषा के अंदर जो फिल्म आई उनकी पैदी, अब वो देखेंगे जो पैदी फिल्म को लेकर उनकी बात हो रही है, जानवी कपूर की जो फिल्म आई है जिसमें रामचरण उनके साथ में जो नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी काम की तारीफ इतनी जबरदस्त हो रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई आपने क्या कमाल का काम किया। अब अगर इतनी सारी तारीफें मिलेंगी तो भाई अच्छा है ना, हर कोई इंसान अपने आप को समझेगा कि हाँ भाई कॉलर ऊंचे करके हमने भी कुछ काम किया है। साथ में फिल्म में दिखाए गए कुछ उन्होंने कहा कि भाई अनवांटेड जो सीन होते हैं इनकी कभी कभी जरूरत नहीं होती है और तो उनको नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा भी देखिए खूबसूरती और जो इंसान का दिमाग है यानी कि सेंसुअलनेस जिसको हम कहते हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से शूट करते हैं तो खूबसूरती को भी अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए। और एक बात आजकल वो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है उनको लेकर कि उन्होंने जो एक टी शर्ट जो उन्होंने वो पहनी उस पर लिखा कि अगर मैं खो गई तो खो गई तो शिखर पहाड़िया जो है उनके बॉयफ्रेंड को कहते कि उनको आप लौटा दीजिएगा, मुझे अगर मैं कहीं इधर उधर खो गई तो मुझे वहां तक पहुंचा दीजिएगा। देखिए वो कहते हैं ना कि ट्रेंड में क्या है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन की जो बातें होती है ना साहब, वो छोटी छोटी नगरी के अंदर ऐसे ही ट्रेंडिंग होने वाली हो जाती है। अब इस गाने के बाद हम आपको क्या बताएंगे, इस गाने के बाद आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे किनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हम उनसे भी बात करने की। तो बस बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपका दोस्त आपके साथ मनीष आजाद, रेडियो वाला।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है।
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: ढिंचिक ढिंचिक आपकी जिंदगी के अंदर अब और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ढिंचिक ढिंचिक करने के लिए हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय जो फोन लाइन पर हैं, आपको बता दें कि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है और हैप्पी वाला बर्थडे के साथ साथ में हम मुबारकबाद आपके साथ साथ में दे रहे हैं। तो कौन है हमारे साथ, अपनी आवाज में जब वो खुद बताएंगे आप खुद ब खुद जान जाएंगे। हेलो
1: हेलो
0: तोशी सर, सबसे पहले आपको आप आज के जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद। आकाशवाणी रेनबो का पूरा परिवार, पूरा भारत आपको सुन रहा है इस समय।
1: थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे पूरे भारत से रूबरू होने का मौका दिया और पूरे भारत की दुआएं मेरे साथ जुड़ेंगी मेरी आवाज के साथ। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
0: नहीं लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके साथ साथ तो पूरा भारत तो जुड़ेगा, लेकिन आपकी जो आवाज है लोगों के दिलों में इस तरह से बसी हुई है कि आपके साथ तो वो हमेशा आपको दुआ में हमेशा वो याद ही रखते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार है और दुआएं हैं लोगों की, मेरे माता पिता की, थैंक यू वेरी मच।
0: तो सर आज आपके जन्मदिन के मौके पर सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपके घर वालों को कि इतना जो कहते हैं ना कि एक हीरा जो आज हमारे देश की जो आवाज है आज लोगों के बीच में, लोगों के दिलों पे है, तो आज अपने अंदाज में आप किस तरह से आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे?
1: मैं यार एक्चुअली स्पीकिंग कल रात बहुत लेट हुआ, बिकॉज कल रात को मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो वी वर आउट द एंटायर फैमिली।
0: ओके,
1: तो हम लोग रात को डिनर पे थे लेट, तो जस्ट अभी सो के उठा हूं। तो नथिंग मच, माय वाइफ, माय बॉयज एंड माय मॉम एंड एवरीबॉडी वाज विद मी लास्ट नाइट फॉर द डिनर। एंड मोस्ट ऑनेस्टली बताऊं तो एक वक्त होता है कि जब आपको अपने बर्थडे की बहुत एक्साइटमेंट होती है, चीजें बहुत तल्लक होती है, एक वक्त आता है अब जब मैच्योर एज की तरफ चले जाते हैं। अभी मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है मेरे बर्थडे की।
0: क्या बात है।
1: और बच्चों की वजह से मुझे भी उसको थोड़ा वैसा एक्साइट बनाना पड़ता है कि चलो पार्टी करते हैं, चलो यहाँ जाते हैं, चलो वहाँ जाते हैं।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है।
1: मेरे दोनों बेटे, उनको बहुत एक्साइटमेंट है मेरे बर्थडे की, और कल रात को भी दोनों ने, मतलब बर्थडे मेरा बर्थडे था कल और केक उन दोनों ने काटा।
0: वेरी गुड।
1: हमेशा ऐसे होता है कि जब घर में बच्चे होते हैं तो केक वो ही काटते हैं।
0: बहुत अच्छा, माशाल्लाह ऐसे करें कि आपके जो बच्चे हैं दोनों के दोनों जिस तरह से वो आपको सेलिब्रेट, आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा भारत इस समय सेलिब्रेट करना चाहता है। सर आपकी आवाज के अंदर दो लाइन अगर कोई भी कुछ हो जाए जो आपको बेहद बेहद पसंद हो।
1: जी मैं आई जस्ट वांटेड टू सिंग टू लाइंस फॉर द लाइव ऑडियंस हू इज लिसनिंग मी राइट नाउ,
0: प्लीज।
1: ओहो तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसके खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोए आ इलाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए आ इलाही।

0: माही, तू आजा मेरे माही, दिल रोए आए लाही, तू आजा मेरे माही।
1: क्या बात है।
0: माही वॉज माई वेरी फर्स्ट सॉन्ग एंड इस गाने ने मुझे पहचान दी है, लोगों में प्यार और लोगों के दिलों में मेरी जगह बनी है इस गाने की वजह से। जब ये गाना आया पहली बार 2008 में, उसके बाद वी हैव डन मोर देन 200 फिल्म्स, मोर देन 400 सॉन्ग्स
1: जी,
0: वी हैव मेनी सुपर हिट ट्रैक्स, बहुत लोगों ने प्यार दिया है हमारे म्यूजिक को। कभी जो बादल बरसे
1: जी,
0: मैं तेनू समझावा की, कितने सारे गाने हम लोगों ने किए और बहुत लोगों ने प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और आप खुश रहें, सलामत रहें।
1: बस बहुत बहुत शुक्रिया तोशी सर, आपने आज इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, उसके लिए मैं पूरे भारत की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
0: थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू।
1: तो आज हमारे साथ थे तोशी साबरी जी, आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे है, लेकिन इनके साथ साथ में आज हैप्पी वाला बर्थडे है प्रतिभा सिन्हा जी का, माला सिन्हा जी की सुपुत्री हैं, साथ साथ में आर्यन वैद मिस्टर इंडिया रहे थे 2000 के अंदर में। इनके साथ साथ में तोशी जी के साथ में दो और सिंगर, श्रद्धा पंडित जी और ऐश्वर्या निगम, इनका भी हैप्पी वाला बर्थडे है। तो ये वाला गीत जो उन्होंने गा के सुनाया था, हम आपको सुनवा देते हैं कि वो आज तक जो खनक है वो कैसी बनी हुई है।

आओ जी, आओ आओ आओ, आप भी आप हमारे साथ आ जाइए, ऐसे ही आ जाइए, इस गीत को सुनेंगे। लेकिन अब बात बता दें कि निकिता गांधी की बात करें, क्योंकि ये गाना भी उन्हीं का ही हमने इसलिए लगाया कि जब हम तीन तीन गायकों के बर्थडे की बात हम करते हैं तो भाई क्यों ना एक सिंगर की बात भी कर ली जाए। निकिता गांधी की अगर बात करते हैं, कितने गाने आप देखेंगे उन्होंने अरिजीत सिंह के साथ में ड्यूट उन्होंने काम किया है। उनका कहना है कि भाई आजकल के जो ट्रेंड है लाइव परफॉर्मेंस और सिंगिंग का, जो रिकॉर्डिंग वाले सिंगिंग है उसके अंदर दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। लाइव सिंगिंग के अंदर बहुत मतलब रिटेक जब हो जाता है उसके बाद बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट दिखाया, क्योंकि वो लंबे समय तक चलता रहता है। लाइव के अंदर आपको बिल्कुल एनर्जी

चाहिए होती है, जो लाइव की ऑडियंस सामने बैठी रहती है, वो आपको वहां पर अच्छे से आपको वो जोश दिलाते। कहते हैं किस्मत का तोहफा थी ये गायकी उनके साथ साथ में। तो चलिए, अब जितना भी तोहफा जैसे मिला है या नहीं तो वो तो बाद में बता।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

थी, अभिनेत्री बन गई और यहां देखो बॉलीवुड में पहुंच गई। हम अभी तक रेडियो पर ही हैं, हम पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन चलो आप बने ना बने, लेकिन लेकिन साथ साथ में गए कि कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाएंगे। और जिंदगी के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगातार होता रहता है। मिलेंगे आपसे, आपकी फरमाइश जब होगी और गीत आपके नाम से बचेगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 98 degrees with what it's something that I did not say, and time now for me to head for a teeny weeny little break. I'll see you on the other side.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
9: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
10: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
11: आज की रात मजा,
10: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
9: म्यूजिक मस्ती।
12: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
13: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
9: म्यूजिक मस्ती।

0: help people merely to gain prestige. You instead, as a human being, offer selfless assistance wherever possible and seize every opportunity to do so. That's a beautiful message, Shyam Sundar. Absolutely. Now, in the days of internet and social media, people do good things, of course, but you know, it's kind of actually, what word to use, I don't know. I mean, I don't want to offend anybody, because though that's the way people like it. But then, you know, showing off on social media, oh, look, I gave this and I did this. So these things actually should be undercovers, because if you're doing something, keep it to yourself. But okay, I mean, it's the way people are comfortable. I can't say anything. And Shyam Sundar, the track you've requested for is just perfect, and I will play that out. But right now, you know what I'm going to do? Take a break. Be right there. I'll see you after this break.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: तुम मेरी राखो लाज हरे।
6: हमारे हृदय के भाव जुड़े प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल।
5: अम्बे चरण कमल है तेरे।
6: शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: वेलकम बैक, एंड यस, द शो इज कॉल्ड प्ले इट कूल, एंड हियर इज अ मैसेज फ्रॉम इंदु। वंस अगेन सेज, आई यूज्ड टू गो टू द पार्क एवरी डे टू फीड स्ट्रे पपीज एंड बॉट पपीज home to save them as other dogs were killing them. And she says, dogs have an extra perception to sense non-physical entities from other dimensions. So it's not that they are attacking the individual, they actually attack the entity. Yes, that could also be very true. And moving on, let me see if I can squeeze that for you, because right now I have a beautiful and a very befitting number coming up, and this one has been requested by our friend Shyam Sundar.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ओ भैया जी, दीदी जी, सभी को नमस्ते। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बहुत नमस्ते। मेरा वाला सॉन्ग यानी कि आपके नाम से सॉन्ग चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने ये कहा कि सर मैंने आपको मैसेज तब भेज दिया था, आपने अभी तक गाना क्यों नहीं चलाया, मतलब सर हमारा गाना क्यों नहीं चला पा रहे हो, सर ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है मेरी, एक मैसेज भेजोगे तो वो मैसेज इस समय अगर स्क्रीन पे देखोगे तो ये बिल्कुल भर चुकी है, और जो ऊपर आते रहेंगे वो बाकी जो है वो नीचे जाते रहेंगे, तो मैं कहाँ कहाँ तक उसको ढूंढता फिरूंगा। इसके लिए एक सबसे अच्छा काम ये है कि आप जो मैसेज है ना, जो आपके गानों की फरमाइश है, आप उसको लगातार, अगर वो मैसेजेस आता रहेगा तो क्या मैसेज बार बार स्क्रोल होकर ऊपर आता रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके गाना चलने के लिए। तो सबसे पहली जो लिस्ट हमारे पास है, ये हम आपको लेके चलते हैं, देवभूमि उत्तराखंड, कविता जी की फरमाइश है। गाना जो उन्होंने कहा, ये गाना वाय वाले फिल्म का हैरो है, तो फिर पहला ये उत्तराखंड, उसके बाद देखो फिर कहाँ लेके चलते हैं आप। कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा गीत चलाने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम आने की, और अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, एक ही गाना होगा तो सब लोगों को सुनना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए 9868107070 हमारा नंबर है। आप भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बता सकते हैं। शुरू हो चुका है मेरा वाला सॉन्ग यानी कि आपके नाम से चलेगा गाना गाना गाना।

हम सीधा दिल्ली उत्तम नगर में, जहां पर खोरवाल परिवार हमारे साथ हैं। भाई दो गानों की फरमाइश है, लेकिन हम उत्तम नगर के जितने भी खोरवाल परिवार के सदस्य हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप जो गाना चल रहा है वो होली चौक उत्तम नगर से

आप लोगों के लिए चल दिया है गाना, तो बस गाने को एंजॉय कीजिए। और भाई अगर गाना चल जाए तो हमें बताते भी रहिए कि आपका गाना चल गया है, चल गया है, चल गया है, चल गया है, चल गया है, चल गया है। मैंने क्या बोला, 9868107070 नंबर है, बताइए आप

आपको लेके चलते हैं हम सीधा अमरावती महाराष्ट्र में, जहां पर वो गाने सर इतने सारे गानों की उन्होंने नाम लेके मेरे को दे दिए हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा सर एक उनमें से एक तो गाना कोई ना कोई मिल ही जाएगा उनमें से करके। तो ये गाना हमने निकाल दिया है आपके लिए, बहुत अच्छा वाला गाना है। आपने भी हमें भोजा तो फिर हमको भी पता लग रहा है, भोजा भोजा करके भेज के बहुत प्यार करते हैं सर तुमको सनम, हम भी आपको ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? 9868107070 से पता चलेगा। भाई देखिए, जिसका गाना अब चल चुका है अगर वो बार बार फरमाइश भेजेगा, इसका मतलब आप देर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैसेज भेजते रहिए है।

लीजिए जी, हितेंद्र दास जी आसाम से। अब आपकी फरमाइश, हम आपको आसाम लेके चलते हैं। आसाम के बाद कहाँ नंबर आएगा भाई? गाने हम बहुत सारे यहाँ पर, जो फरमाइश है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी आपके गाने चलाने की, वो भी आपके नाम से। लेकिन मैसेजेस आते रहेंगे, अब वो मैं बहुत ये स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये ना हो जाए कि सर आपने हमारे गाने चलाएंगे, सर आपने हमारे गाने चलाएंगे सर। अरे भाई चलाएंगे चलाएंगे, अरे भाई आपको चलाएंगे। 9868107070 हमारा नंबर है। कोशिश सभी की फरमाइशों को पूरा करने की है।

0: जितने मैसेज होंगे गानों के आपके भी गाने चलेंगे आपके नाम से।
1: देखिए मेरी कोशिश, मैंने क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश है आपके नाम से गीत चलाने की। अब तनु जर्मन वाश ने हमें अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने गाना लिखा है, सर गाना ये आपका ये चल चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके नाम से भी गाना चल सकता है। जैसे सौरभ अनिजा ने कहा, भाई साहब कोई भी फरमाइश नहीं है, बस आप नाम ले लीजिए। ऐसे ही हमें जम्मू कश्मीर से राजू मल्होत्रा, रानी मल्होत्रा, इन्होंने कहा, सर आप बस नाम ले दीजिए, वो ही बहुत है हमारे लिए। कितने अच्छे लोग हैं, देखो हैं। आप भी बोलिए अपने दोस्तों को, हैं? देखिए जो यहां से मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे हमारे धड़ाधड़ धड़ाधड़, भाई मैसेजेस आपके ऊपर दिखेंगे ना तो चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, ध्यान रखो भाई।

0: भाई देखिए, कभी कभी गाने कैसे होते हैं हमारे पास, कभी कभी गाने की एक ही गाने की जो फरमाइश है वो भी अच्छा अच्छा लगता है कि जब वो गाना कई सारे लोग सुनना चाहते हैं। जैसे ये वाला जो गाना था, ये वाला गाना आप देखेंगे तो वैसे तो ये हमारे पास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से था, वाशने फैमिली का, लेकिन मोहम्मद इम्तियाज भाई जवाहर कैब से उनको कहा भाई मनीष भाई ये वाला गाना हमारा भी पसंद का आप भी चला देंगे, तो भाई चल गया, देखो सबका काम हो गया, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है किसी का नाम नहीं आ पाता है, किसी का गाना नहीं चल पाता है, तो देखिए नाराजगी होती है भाई, ये बात अपन को भी समझ में आ रही है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अब रामबाबू मालविया, मनीषा मालविया, कोलार रोड भोपाल, कौन सा गाना, जे बाला।
1: वो बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, मैं कैसे देखें, गुस्से से देखें क्या हम हैं।
0: किसी भी गीत में शामिल करने के लिए कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारी और ताहिरा, और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, अब्बासी परिवार के सभी लोग, पूरा अब्बासी परिवार, गीत सुने, आनंद उठाएं और खुश हो जाएं।

अरे यही तो हम भी कह रहे हैं, हमें भी तुमसे ऐसे प्यार हो जाएगा। भाई रात भाई जान, भाई कैसे हो? गजाला बाजी, देखो आपके लिए भी अब गाना, अब आपका नंबर हमने लगा दिया है। सलीम भाई, मैं क्या आदाब है। रेशमा बाजी, आपको भी। भाई अलीगढ़ वालों, भाई आप सभी के साथ साथ देखिए, जो गाना चल रहा है ना, गाने के साथ साथ जो गाना आ रहा है, एंजॉय कीजिए, ज्यादा अच्छा ये है। गाना सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा चलता रहेगा, है ना? कोशिश मेरी यही है। मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा गाने चलेंगे आप सभी लोगों के लिए, कोशिश। और दूसरा भैया, भाई ये गाना चल गया आपके नाम से तो अब ये बार बार दो दूसरे गाने भेजे जाओ, भेजे जाओ, भेजे जाओ। तक कहां रखूंगा इन्हें? वैसे एक बात की बहुत खुशी हो रही, बहुत ज्यादा। अगर आप भी अपने नाम से, आप चाहते हैं कि आपके नाम से गीत यहां पर चलाए जाएं, तो आप प्लीज मैसेज जो है 9868107070 पर भेजते जाएं। भाई देखिए, ये उत्तम नगर से, भाई अब देखो ऐसे मत करो, आपके नाम से गाने चल चुके हैं, बाकी लोगों का भी नंबर आने दो। भाई ऐसा नहीं है भाई, अब जिन लोगों का नंबर आ चुका है, धन्यवाद करते रहें, इसके साथ साथ में और लोगों को आगे बढ़ाते रहें।

पहले मैं बाकी लोगों के नाम तो ले लूं, उसके बाद गाने चलते रहेंगे भाई। अब हम आपको लेके चलते हैं आनंद विहार। आनंद विहार से हमारे साथ किशन वंजनी, नीलम, स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आपका गीत हमारे साथ, और हम सब इसका आनंद उठाएंगे। मैंने क्या बोला, कोशिश ज्यादा से ज्यादा है हमारे साथ है भाई। गुड्डू भाई भी जुड़ चुके हमारे साथ मध्य प्रदेश से। गुड्डू भाई, भाई क्या हो रहा है? भाई अलीगढ़ वालों, देखो मैंने गाना चला दिया, अब आज से तुम मच करो मेरे साथ। मैं नहीं तो सलमा भाई तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। भाई बाजी का थैंक यू आ गया।

भाई रिमझिम रिमझिम वाले मौसम के अंदर मनीष गौड़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे साथ के सर, देखिए यहाँ भी रिमझिम है भाई। देखो मनीष भाई, वो गाना और ये गाना दोनों के दोनों बराबर से चल रहे हैं साथ साथ में, तो इनका भी आनंद लेते रहिए ना।

सभी लोगों के चेहरे खिल गए और फिर आप लोगों ने गानों की फरमाइश यहाँ पर कर दी। अब हमारे पास उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, उनके मम्मी पापा कन्हैयालाल, रीटा देवी आपके प्रोग्राम को सर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा जी, और आपके नाम से मैंने गाना भी निकाल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ठीक है, वो कभी कभी क्या है वो नीचे लग गया है। सुमन करमारकर हमें सोनीपत आसाम से, नयन, मीरा, पूनम, शिवानी, प्रशांत, और देखिए मैं आपको बोलूंगा सर खोरवाल परिवार जी, मैंने पहले से बोल दिया था बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी जी, गीतिका खोरवाल जी, भानु प्रकाश जी, आप सभी के नाम मैं पहले भी ले चुका था, पूरे के पूरे खोरवाल परिवार हमारे साथ जुड़े पड़े हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रदीप सलूजा जी, मैं क्या पाजी पंजाबी दे गीत तो सारे हैं, तुम साढ़े नाल वैसे ही नाच लियो, तुम भी उत्थे नाचो, असी इतने नाच रहे हैं, ठीक रहेगा, ठीक है जी। और गाने देखिए, मैंने कहा आपसे कहा ना कि गाने की जो फरमाइश है, अगर आप कभी कभी क्या होता है एक मैसेज भेज के वो चला जाता है, लेकिन वो बार बार अगर मैसेज वो आएगी ना तो वो ऊपर आपके मैसेज जो हमारे पास बने रहेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि मेरे को ऊपर वाले गाने बिल्कुल याद रहेंगे, तो उससे पता चल जाएगा भाई साहब ये वाले गाना जो लगातार इसकी फरमाइश हमारे पास आ रही है। मेरठ कैंट से भी सर हमारे साथ प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है सर जी। अब ये अगला गाना फरमाइश,

भाई जिन्होंने अगर देर से अगर अभी अभी अपना रेनबो सेट ऑन किया होगा तो उन्होंने कहा मैडम जी नमस्ते, देखो सर जी मैं कह रहा हूँ मैडम नहीं यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, आपका गाना हम चलाने की कोशिश करेंगे उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार खयाला से।

अगला जो गीत है अब ये कौन सा है कि उन्होंने कहा सर आप कौन, ओपी राठौर सर की तरह? नहीं नहीं सर, वो बहुत लेजेंड आदमी सर, मैं तो बहुत छोटा सा, मेरा नाम तो मनीष आजाद रेडियो वाला है सर, कोशिश मैं तो अपने प्रोग्राम को करने की कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ें हैं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं और गोवा से, आपकी फरमाइश सर।

और आप सभी हमारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, थैंक यू सो मच है। और ओपी राठौर सर से आपने मेरा, मतलब उन्होंने कहा आप ऐसा कर, नहीं सर मैं वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ सर मैं से, वो बहुत लेजेंड के भी लेजेंड है और हम तो बस छोटे से एक कलाकार हैं सर। अब आपको लेकर चलते हैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हर किरण सर हमारे साथ हैं। सर जी ने जो गाना कहा है, और हरकिरण सर मैं तुहानू दसना कि जी ए जो गाना ना मैं कल तो बहुत, मतलब इन्नी बार मैं याद किया मैं ये गाना, थैंक यू सो मच कि आपने ये वाला गाना भी आपने बोल दिया, तो मतलब एक पसंद आपकी और मैं एक पसंद मेरी, दोनों की दोनों मिल गई। बिजनौर वालों भाई आपके पास ही आ रहा हूँ मैं इस हफ्ते। वाशने परिवार के वकील बाबू, अरे अब तो मान जाओ। अच्छा रिंकू भाई, आपने जो गाना लिखा है वो गाना मैं आपको

मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह पर बाहर बिल्कुल औसम मौसम हो रहा है, तो चलिए इस औसम मौसम के अंदर इस मौसम में थोड़ा सा और मौसम बना देते हैं, शुक्र को शनिवार बना देते हैं। मनीष जी मजबूर फिल्म का गाना चला दीजिए। लीजिए साहब आपका गाना हम आपके लिए बिल्कुल तैयार करके रखे हैं, हमने जरा सा उसमें सब पराठे पे थोड़ा सा मक्खन लगा दिया है आपके गाने पे। मक्खन ज़्यादा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बताइए? भाई मुझे तो पराठे बहुत पसंद है। वो कहते हैं मोटे हो जाएंगे, अरे हो जाना थोड़ा सा चलेगा, जब इस तरह के गीत चलेंगे ना तो अपना आप ही मज़ा इसके अंदर दो गुना हो जाता है, क्या कहते हो? अभी भी है वैसे तो 5-7 मिनट, अभी भी आपके 2-3 गाने तो चले जाएंगे, देख लो अभी तक 14 गाने चला चुका हूँ मैं।

Le valía. Que sé ese. अब हमारा भी जाने का समय आ जाएगा भाऊजी। कंचन स्टूडियो में पहले आ चुकी हैं और जब तक ये डूडू डूडू कर रही हैं मैडम, तब तक थोड़ा सा गाना और आपको बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम था ये कौन सा मेरा वाला सॉन्ग आपके नाम से चला। ये भाई साहब 15वां गाना चला रहा हूं। मैं अपने आप को सोच रहा हूं क्या किया आज, कैसे चलाएं गाने। प्रोग्राम शुरू होने वाला है आशियाना, कंचन आपके साथ में होंगी, उसके बाद प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर, कोमल आपके साथ में होगी, कोमल भारती, प्रोग्राम होगा अल्फा जैन आपके साथ, कंचन फिर से होंगी और सिटी लाइट लेकर कोमल हाजिर होंगी, प्रियंका त्रिपाठी लेकर आएंगी प्रोग्राम माँ से, वैसे तो मनीष होता लेकिन ये मैसेज मसाला मिक्स करेंगी वो, है ना। उसके बाद सुशांत आएंगे लेकर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का सैटरडे सेजलिस, उसके बाद नविता कुमारी प्रोग्राम करेंगी पॉडकास्ट विद, उनका पॉडकास्ट का प्रोग्राम है द आकाशवाणी पॉडकास्ट, तो इसको जरूर सुनिएगा ठीक है।

0: आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम आशियाना के साथ मैं कंचन। इतनी सारी बातें घर परिवार की जिनके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी जो है ना घूमती रहती है और हमें सुकून मिलता है तो सिर्फ अपने अपनों के बीच, अपने घर में, अपने आशियाने में, अपने घरौंदे में। तभी तो घर परिवार की तमाम बातों को समेट कर हम आ जाते हैं प्रोग्राम आशियाना के साथ एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक। नमस्कार, मैं आपके साथ कंचन हूँ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो दिल से जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ आकाशवाणी पर।

दोस्तों, घर एक ऐसी जगह है जहाँ बस प्यार बसा होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, तभी तो हम घर से इतना अधिक प्यार करते हैं। घर एक ऐसी जगह है जहाँ दिल को मिलता है सुकून, एक ऐसी जगह है जहाँ कोई पूछने वाला होता है कि तुम इतना थके क्यों हो, तुमने खाना खाया या नहीं, है ना। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और वैसे तो छुट्टी वाले दिन घर में सभी बहुत आराम करने के मूड में होते हैं। सुबह देर से उठना, थोड़ी बातचीत, गपशप, और उसके बाद घड़ी के साथ तेज़ रफ्तार में घर बाहर के सारे कामकाज को ख़त्म करने की एक कोशिश चलती रहती है सबकी। और कभी कभी तो लगता है कि छुट्टी वाले दिन ज़्यादा ही थकान हो जाती है, लेकिन वो थकान महसूस नहीं होती क्योंकि हम अपने अपनों के साथ बैठते हैं, थोड़ा सा बेफिक्र होकर बैठते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, बतियाते हैं, हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, और अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा समय बिता पाते हैं, तभी वो थकान जो है महसूस नहीं होती। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं आपके साथ कंचन, बहुत ही मीठे मीठे, बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ।

हमारे घर में, हमारे आशियाने में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम सोचते नहीं हैं, सोचते कुछ हैं और हो कुछ भी जाता है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपने छुट्टी वाले दिन घर में बहुत सारा काम बिखेरा हुआ है, घर पूरा फैला हुआ है, कपड़ों की धुलाई, फर्श की सफाई, कबाड़ का जुगाड़, बगीचे की सफाई, खाना, रसोई की सफाई, उफ इतने सारे काम है ना, यानी पूरा घर जो है ना थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, उल्टा पुल्टा है। और इसी बीच अचानक थोड़े से मेहमान आ जाते हैं, फिर क्या होता है आपके साथ, आप थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्या हो जाता है बताइए ना। चलिए बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन इस गीत के बाद। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, आप जुड़े हैं FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

बिल्कुल, हमारे आशियाने में सबके लिए जगह हो क्योंकि वहाँ बस प्यार और प्यार बसा है। वैसे छुट्टी वाले दिन जब घर बहुत बिखरा हुआ हो, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो और आप बिल्कुल छुट्टी के मूड में हो और तभी बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, फिर क्या होता है आपके साथ कि आप थोड़े परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या नाराज़ होने लगते हैं धीरे धीरे करके, गुमसुम होकर, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन ऐसे स्थिति में बहुत ही आराम से, बहुत ही खुश होकर चीज़ों को हैंडल करने की बहुत धैर्य से ज़रूरत होती है। कोई मेहमान अगर आपके घर में आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि वो आपको कितना अपना समझते हैं ना। अगर कोई किसी को अपना समझते हैं तभी तो जाते हैं उस घर में। और जैसे कि हमारी दादी नानी या हमारी अम्मा बिल्कुल दिखावे से दूर होकर मेहमानों का स्वागत करती थी, शायद हमें भी वैसे ही करने की ज़रूरत है। और आज के समय में अगर कोई आपके घर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। घर जैसी भी स्थिति में है, बहुत ही खुले मन से, बहुत ही प्यार से स्वागत करना हमारे परिवार के दिए हुए अच्छे संस्कारों को ज़रूर दिखाता है। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

बिल्कुल, घर है दोस्तों तो कभी घर सजा संवरा रहेगा, कई बार अस्त व्यस्त रहेगा, और हो सकता है कि छुट्टी वाले दिन हमारा घर जो है थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है कि खाने में मेहमानों को हम तरह तरह के व्यंजन ना परोस सकें, लेकिन जो कुछ भी घर में पका है उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनापन के साथ हमें परोसना होगा, और ये भी स्वीकार करना होगा कि घर है साहब तभी तो वो कभी कभी अस्त व्यस्त भी है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, घर हर वक्त सजा सवरा नहीं रह सकता है, क्योंकि घर घर है, हमारा घर आता है, कोई होटल नहीं है जो बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से सजा हुआ सवरा हुआ चकाचक रहेगा। इसलिए खुलकर अपने घर में मेहमानों का स्वागत कीजिए और बिंदास एक बहुत ही अच्छा पल बिताइए। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही मीठे मीठे गीत हम सुनवाते रहेंगे, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: वाकई दोस्तों, मौसम बहुत प्यारा है। फिलहाल समय हो चला है 2:28:37। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी बिल्कुल, हम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और कई बार हमारी भी ऐसी ही भावनाएं होती हैं कि ईश्वर ना करे कि हम आपसे बिछड़ें। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और हमें पता है कि आप अपनी बगिया से, वहाँ के पौधों से, पेड़ पत्तों से बहुत अधिक प्यार करते हैं। अब देखिए ना, गर्मी में हमारे पौधों की क्या हालत हो गई है, हमारी बगिया की क्या हालत हो गई है। उन्हें पूरी गर्मी बचाने की हमारी कोशिश रहती है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन झमाझम बारिश होते ही हमारी बगिया में जो मौसम का रंग है ना, वो दिखने लग जाता है। पौधों में नई जान आ जाती है और मानसून के दस्तक देते ही अपने पौधों की रिपोर्टिंग करने से लेकर खाद डालने और नए नए पौधों को लगाने की भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो बगिया की देखभाल में घर के पूरे सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए और पता ही नहीं चलता कि कब हमारी जो बगिया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो गई। और इसी बहाने घर के पूरे सदस्यों के साथ मिलकर हम एक कप चाय तो पी ही सकते हैं और एक बहुत अच्छा समय होता है जब बगिया के ढेर सारे कामकाज को हम हाथों हाथ कर लेते हैं और हम भी एक बहुत ही अच्छा समय बिता पाते हैं अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और मैं आपके साथ कंचन। दोस्तों, आम का जो मौसम है ना, वो अपने चरम पर है। बाजार में तरह तरह के आम हैं, मालदा, दशहरी, चौसा, केसरी, बम्बई और भी तरह तरह के आम। और आम का मौसम जो है ना, वो सिर्फ एक बार आता है साल में, और माना जाता है कि आम खाने से वजन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। पापा जी को डायबिटीज़ है और वो कहा करते हैं कि क्या साल में एक बार आम आता है तो क्या आम ना खाएं? जी सर, आप आम ज़रूर खाएं और आम खाने का आनंद लें, लेकिन एक्सरसाइज और फाइबर युक्त डाइट से भी पक्की वाली दोस्ती कर लें, ताकि आम खाने का कोई नुकसान ना हो आपके। और आम के साथ साथ जामुन भी खाते रहें, क्योंकि जामुन जो है ना, उससे कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहता है, पेट में जितनी अशुद्धियाँ होती हैं वो गल जाती हैं। और देखिए ना, प्रकृति ने भी हमें सेहतमंद रहने के लिए बहुत कुछ दिया है। मौसम में ही स्वस्थ रहने के बहुत सारे नुस्खे छुपे होते हैं, तो उन चीज़ों से हम दोस्ती करें जो हेल्दी है, और जो हमारी दादी नानी कहा करती थी कि जिन्हें खाने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो आम के बाद जाम यानी जामुन, और जामुन के बाद फिर आम खाएं, लेकिन एक्सरसाइज करें और अपनी डायबिटिक डाइट जो है वो भी जारी रखें। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे इस प्रोग्राम में।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों, हम लोग एक दूसरे से कितनी अधिक शिकायत पालते हैं ना, सास को बहू से शिकायत, बहू को ननद से शिकायत। और आज के दौर में अगर देखें तो फ़ोन भी रिश्तों के ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। फ़ोन पर छोटी से छोटी बातों को हम शेयर करते रहते हैं। पड़ोस की अम्मा कहती हैं कि आजकल लोग

घर की हींग से लेकर हल्दी तक फोन पर ही बतियाते हैं, यानी कि घर की छोटी से छोटी बातों को शेयर कर देते हैं। ससुराल की बात मायके में, मायके की बात ससुराल में, और फिर क्या होता है कि हम दूसरे को अहमियत देना कम कर देते हैं। घर की हर छोटी छोटी बात शेयर करने से लोग शायद हमारे घर में बसे प्यार को समझ ही नहीं पाते, उन्हें गंभीरता से ले ही नहीं पाते, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को सिर्फ अपने तक रखना अच्छा होता है। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं कंचन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा, लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपको सेहतमंद बनाए रखने का संकल्प है हमारा। इसी प्रयास में हमारा आज का विषय है अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। आपको जानकारी दे दें कि विश्व

0: अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मानसिंह, ईएनटी स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर सीजीएचएस न्यू दिल्ली। स्वागत करती हूं अपने दोनों विशेषज्ञों का। डॉक्टर अजीत मानसिंह सर और डॉक्टर रेहान सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: जी डॉक्टर अजीत सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अस्थमा क्या है और अस्थमा किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है?
1: अस्थमा ज्यादातर छाती की परेशानी है, जहाँ छाती बाहर के प्रदूषण और जो ट्रिगर फैक्टर कहते हैं उससे ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं, तो सांस के रास्ते जो है वो सुकड़ जाते हैं
0: जी।
1: तो पूरी तरह छाती में हवा नहीं जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है
0: जी। बहुत सारे सवाल हैं अभी हमारे पास और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस समय गीत हम सुनेंगे जो डॉक्टर रेहान सर ने ऑफलाइन मुझे बताया था। चलिए सुनते हैं।

0: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा पर, और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। जान लेते हैं कि उनका क्या है सवाल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, अपना नाम बताएं सर।
1: जी, रविंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी रविंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
1: जानकारी ये चाहिए मैम, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, प्रेजेंट में है भी, सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आ जाती है, खांसी आती है तो सीने में तो हल्का फुल्का जकड़न होता है, लेकिन जब खांसी तेज आती है तो पीछे की जो पसलियां की हड्डियां हैं उनमें दर्द होने लगता है, तो क्या कारण हो सकता है?
0: क्या कारण हो सकता है, आप ये जानना चाहते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा,
2: जैसा कि आप बता रहे हैं बार बार खांसी लेने से आपको दर्द हो रहा है। देखिए, जब आप बार बार खांसते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, तो उसी वजह से दर्द होता है। तो जैसे अगर आप खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द भी चला जाएगा।
1: जी, यानी वैसे और कोई लक्षण तो नहीं सर?
2: नहीं, देखो अस्थमा के मेन लक्षण ये होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी जैसी आवाज आती है।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं।
2: हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पहले अभी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि खांसी को अभी कंट्रोल कीजिए।
0: जी, थोड़ी सी एहतियात बरतें, मौसम बदलने का भी असर हो सकता है, और बाकी लक्षण तो आपको बता ही दिए हैं और आगे भी हम चर्चा करेंगे, तो प्रोग्राम गौर से सुनते रहें। हम अपने सभी श्रोताओं से यही करेंगे। डॉक्टर रेहान सर, आपसे एक सवाल मेरा अब ये है कि अस्थमा होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों को जरा से इस मौसम में खांसी जुकाम

0: होता है तो ये लगने लगता है कि कहीं बीमारी तो नहीं कोई है ये।
1: देखिए अस्थमा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एक होता है इंट्रिंसिक।
0: जी
1: तो एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो मेनली एलर्जेंस के कारण होता है, जैसे डस्ट हो गया, धुआं हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये मेनली बच्चों में होता है, लेकिन ये टाइम के साथ ठीक होने लगता है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है वो मेनली

0: बड़ों में होता है, एडोलसेंस के बाद होता है,
1: जी
0: और ये मेनली इन्फेक्शंस के कारण होता है, लेकिन ये जहां तक रहता है थोड़ा लाइफ लॉन्ग चलता है अस्थमा।
1: हाँ।
0: तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो कंट्रोल रहती है चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं
1: जी। और ट्रीटमेंट क्या होगा आगे आपसे जानेंगे। डॉक्टर अजीत सर, आपसे सवाल है मेरा कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं।
2: अस्थमा के सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि खांसी होती है, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर सांस बाहर निकालने में तकलीफ ज्यादा होती है, अंदर फिर भी लेते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी की आवाज बनती है।
1: अच्छा।
2: कई बारी तो ये सीटी की आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास के लोगों को भी सुनाई देती है, पर मरीज यही कहता है कि सीटी की आवाज है, और ये परेशानी रात को जब लेटे होते हैं तो और खराब हो जाती है।
1: तो ये कहा जा सकता है कि रात में या दिन में अस्थमा ज्यादा

0: करता है, ऐसा कहा जा सकता है। बताएं अजीत सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: अस्थमा के लक्षण और जो सांस लेने में तकलीफ होती है ज्यादातर रात को ही होती है, क्योंकि जब आदमी लेटा होता है तब हवा कम जाती है फेफड़ों में। तो दिन में अगर आदमी खड़ा है और थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो कई बारी अस्थमा के लक्षण कम होते हैं, सांस लेने में दिक्कत कम होती है। सुबह सुबह अगर एकदम बाहर निकलो, ठंड में जाओ, तब भी ट्रिगर फैक्टर होते, तब भी अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं।
0: तो ये थोड़ी सी एहतियात रखनी होती है कि जब आप सोकर उठें तो थोड़ा सा तापमान लेवल पे आ जाने दें, तब कहीं जाके हमें बाहर निकलना चाहिए।
1: एकदम से अपने पैरों को ठंडी फर्श पे नहीं टच करने दें, अचानक ठंडी हवा नहीं लगने दें।
0: जी, अस्थमा के रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे रेहान सर?
2: जी देखिए, धीरे धीरे जैसे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, और जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, धूल हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, तो जैसे जैसे इनसे एक्सपोजर बढ़ रहा है उसी हिसाब से इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं।
0: डॉक्टर अजीत सर, मौसम बदलाव की वजह से अस्थमा जो है गंभीर रूप ले सकता है क्या?
1: मौसम बदलाव के दो चीजें हैं, एक तो मार्च अप्रैल में है, मौसम बदलता है, उसके साथ ही पोलन सीजन है। पेड़ का जो पोलन है, जो कि सबसे बड़ा कारण है अस्थमा का, एक अभी होता है, एक सितंबर अक्टूबर में होता है, दोनों ही टाइम मौसम बदलाव के साथ ही पोलन होते हैं। उसके बावजूद अचानक सर्द गर्म और जब मौसम बदलते हैं तब भी छाती के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, अस्थमा के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अस्थमा किस तरह से आपको अटैक करता है और किस मौसम में आपको सावधान रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं, ये आपको जरूर बताएंगे डॉक्टर।

बार हम चर्चा कर रहे हैं कि अस्थमा किस तरह से आपको अटैक करता है और किस मौसम में आपको सावधान रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं, ये आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर रेहान सर, अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनको जानकारी है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी नहीं भी होती है तो अचानक से ऐसा अटैक आने पर लोग परेशान हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: बोल रहा हूँ।
1: जी, शुभ नाम बता दें अपना।
0: हाँ, वीपी सिंह नाम है मेरा।
1: जी वीपी सिंह जी, बताएं क्या सवाल है आपका।
0: डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले मुझे कुछ दिन मैंने अपने टेस्ट कराए थे, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे, और 2 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी। खांसी का तो ट्रीटमेंट हो गया, अब खांसी है नहीं, लेकिन जब कभी कभी धीरे धीरे जब हम खांसते हैं पेन होता है चेस्ट के अंदर।
1: अच्छा।
0: हल्का सा, खांसी जोर से नहीं आती है, जैसे नॉर्मल तरीके से कई बार खांसी आ जाती है
1: जी,
0: उस वजह से उस पेन होता है चेस्ट में, तो ये क्या कौन सा लक्षण हो सकता है ये मेरा जानना।
2: देखिए, आप जो बता रहे हैं आपको खांसी के साथ में चेस्ट में पेन है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये चेस्ट की बीमारी हो सकती है या फिर आपके जो कार्डियक इशू हो सकता है वो हो सकता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए बेसिक टेस्ट होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस जो होता है सांस की बीमारी और कार्डियक में, कि सांस की बीमारी में मेन सीटी जैसी आवाज आती है।
0: अच्छा।
2: जबकि जो कार्डियक बीमारी है उसके अंदर सीटी जैसी आवाज नहीं आती, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस जिसको बोला जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे, तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस चीज को।
0: मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है
1: जी। आपकी उम्र क्या है सर? उम्र क्या है आपकी लगभग?
0: मेरी एज है 65 प्लस।
1: अच्छा, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है इस मौसम में, देखिए किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इनको जो सलाह?
2: जी, आपको मेन चेस्ट में पेन रहता है ये बता रहे हैं आप?
0: पेन नहीं रहता चेस्ट में
2: जी,
0: जैसे हम खांसते हैं नॉर्मल।
2: जी जी,
0: उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2-3 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी, वो तेज खांसी थी।
2: जी जी,
0: उससे पहले ये दिक्कत नहीं थी।
2: जी जी,
0: अब खांसी तो मेरी ठीक हो गई, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ठीक हो गई।
2: जी जी,
0: और ट्रीटमेंट भी चला मेरा।
2: तो अभी अभी क्या दिक्कत हो रहा है बताइए आप?
0: दिक्कत ये है जैसे कभी कभी खांसी आ जाती है ना नॉर्मल, उसमें
2: जी जी
0: तो कष्ट होता है चेस्ट के अंदर।
2: देखिए, वो तो नॉर्मल है, वो तो सब में ही, जैसे खांसी अगर होता है तो उस टाइम इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम वो टेम्पररी है वो चीज। एक सेकंड डॉक्टर साहब, ऐड करना चाहेंगे।
3: डॉक्टर हैरान ने पहले भी बोला, अगर तेजी से खांसी करे, कुछ भी खांसी करे, तो जो चेस्ट के मसल वगैरह है उन पे स्ट्रेन पड़ता है। हल्का फुल्का दर्द किसी भी खांसी से हो सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
1: जी, आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास मैसेज आ चुका है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, लिख रहे हैं कि नमस्कार, मेरी बहन को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और उसे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ उसको छींक भी बहुत ज्यादा आती है, उसके लिए उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसे कई बार घबराहट भी बहुत ज्यादा होती है और नाक से सांस बिल्कुल नहीं आती है, किस तरह की सावधानी बरतें?
3: ये जो आप अपने सिम्टम बता रहे हैं ये ज़्यादातर एलर्जिक राइनाइटिस के हैं, जो एलर्जी प्रॉब्लम नाक की है, कि छींके आती है, नाक से पानी आता है, नाक से सांस बंद हो जाता है। एलर्जी, नाक की एलर्जी और अस्थमा में काफ़ी संबंध है। लगभग 60% मरीज जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, पॉलिप होते हैं, उनको अस्थमा भी होता है, और अस्थमा वालों को भी नाक के सिम्टम होते हैं, दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। तो जो नाक के सिम्टम हैं उनके लिए तो एंटी एलर्जिक गोलियां, एंटी एलर्जिक स्प्रेज आते हैं, वो लगातार लेने पड़ेंगे। साथ के साथ दमा अस्थमा का जो गोली और इनहेलर डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं, वो साथ के साथ चलेंगे, दोनों ही इलाज इकट्ठे चलेंगे, और टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि किस चीज से एलर्जी है। एलर्जी के टेस्टिंग 2 किस्म की होती है, या तो स्किन प्रिक के टेस्ट होते हैं, या आजकल ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं, थोड़े महंगे टेस्ट जरूर हैं, पर वो एक सिंगल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज से एलर्जी है, और उसको अवॉइड करने से आपकी चीजें कंट्रोल में रह सकती हैं।
1: जी, और इससे डॉक्टर साहब ये भी क्लियर हो जाएगा कि अस्थमा है या नॉर्मल एलर्जी है, इनको ये भी जानकारी हो जाएगी।
3: कई बार दोनों इकट्ठे साथ के, दोनों ही साथ चलते हैं, पर अगर छाती की दिक्कत ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत ज्यादा है, तो वो अस्थमा की लक्षण ज्यादा है।
1: जी, क्या फेफड़ों की स्थायी बीमारी होती है अस्थमा, या इसे ठीक किया जा सकता है?
2: देखिए, जो अस्थमा जो होता है वो स्थायी तो हम नहीं कह सकते
1: जी।
2: जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर बच्चों में हो रही है तो टाइम के साथ वो ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ों में हो रही है तो वो लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंट्रोलेबल डिजीज है, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं और सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग आराम से,
1: मतलब जिनको अनुवांशिक है ये बीमारी, वो भी ठीक होने की गुंजाइश बनती है।
2: जी जी, ठीक तो नहीं कह सकते, बस हाँ। कंट्रोल रह सकती है बीमारी, आराम से अच्छा जीवन जी सकता है मरीज, जो अस्थमा का मरीज होता है वो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि बच्चे हैं, जैसे बड़े हैं वो अपनी केयर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, खेलने भी जा रहे हैं, तो क्या उनको हर वक्त इनहेलर साथ में रखना चाहिए?
2: देखिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तो पेरेंट्स एक हमेशा ध्यान रखें कि एक इनहेलर जो होता है वो उनके बैग में

0: जरूर रखें, साथ में जो उनके टीचर्स हैं स्कूल में उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये बच्चा अस्थमेटिक है, कभी कोई जरूरत पड़े तो इस हिसाब से इस इनहेलर का यूज करना है वो, ताकि उनको बता सकें तो प्रिकॉशनरी इमरजेंसी केस में वो संभाल सकें उस चीज को।
1: तो बहुत सावधानी बरतिए, और किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: मैं रघुवीर सिंह उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी सर बताएं क्या सवाल है आपका।
2: एक हमारे गाँव का कोई आदमी था, तो वो शुरू में बहुत सिगरेट पीता था, तो अब सिगरेट पीने से उसको क्या हो गया, अस्थमा या एलर्जी कुछ बीमारी हो गया था, अब तो एक्सपायर भी हो गया। अब डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सिगरेट पीने से तो या तो माउथ ओरल कैंसर हो सकता है, तो इस हिसाब से हम सिगरेट पीने से अस्थमा का और ओरल कैंसर का क्या अंतर होगा, आप ये बताइए।
0: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिगरेट होता है वो हर बीमारी का एक जो इटियोलॉजी होती है, कोज होता है, वो सिगरेट होता ही है। तो सिगरेट माउथ कैंसर भी कॉज कर सकता है, सिगरेट लंग कैंसर भी कॉज सकता है, और सिगरेट जो है अस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, तो जितना हो सके सिगरेट स्मोकिंग जो होता है हमें अवॉइड करना चाहिए।
1: तो इनको आपने गाइड कर दिया है। आलोका जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रही है कि आई एम 54 ईयर ओल्ड फ्रॉम नोएडा, इन्होंने नोएडा से ये सवाल भेजा है। आई एम वेरी एलर्जेटिक और पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, कोल्ड वेदर एक्सेट्रा, कभी कभी विजिंग होती है सोते हुए, डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन फायदा नहीं हो रहा, क्या इनको करना चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही हैं, लिखती हैं।
0: देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेन इन्होंने खुद ही बता दिया ट्रिगरिंग फैक्टर, जो डस्ट से एलर्जी होती है इनको, स्मोक से एलर्जी होती है
1: जी।
0: तो इन सब चीजों से, ट्रिगरिंग फैक्टर से आपको दूर रहना है, वही सबसे बड़ा इलाज होता है इस चीज में।
1: तो क्या ये साथ में जो मेडिसिन ले रही हूँ होम्योपैथिक, अगर ये कुछ और भी ट्रीटमेंट लें तो क्या दोनों साथ साथ पॉसिबल है?
0: जी जी, मेनली अब इनको अगर कंटिन्यू रहता है तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन तो जब भी अटैक होता है उस टाइम साथ में लें, और स्टीरोइड्स का जो इनहेलर जो होता है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, वो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, इसके बारे में कैसे इस्तेमाल करें ये हम आपसे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
3: निर्भय सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी।
3: डॉक्टर साहब मेरा ये कहना था कि मुझे कुछ दिन पहले खांसी हुई थी, और खांसी के बाद ना खांसी तो ठीक हो गई है मगर बलगम बहुत आ रहा है, और ये 2-3 साल में लगभग रिपीट हो जाता है। मेरी उम्र लगभग 40 साल है।
4: आपको ये बताना पड़ेगा कि खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक से गले में बलगम गिर रहा है, किस किस्म का बलगम की बात कर रहे हैं?
3: गले गले में रहता है बलगम बस।
4: तो यानी छाती से खांसी करके अगर बलगम नहीं निकल रहा है तब ये दमा और अस्थमा नहीं लग रहा है, ये ज्यादातर साइनस की प्रॉब्लम लग रही है कि नाक से अगर पीछे बलगम गले में गिरे तो वो गले में इकट्ठा होता है और फिर आपको वो बार बार साफ करना पड़ता है।
3: घबराने की तो कोई बात
4: नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, पर ये आपको चेकअप करा के इसका जो इलाज है वो करवाना पड़ेगा।
3: नहीं वैसे वो तो डॉक्टर साहब से चल रहा है इलाज, वही कहते हैं 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, मगर फिर भी मेरे मन में थोड़ी शंका हुई, मैं डॉक्टर साहब से पूछ पता करता हूँ।
4: नहीं ये साइनस के लक्षण लग रहे हैं, दमे अस्थमा के नहीं लग रहे हैं, जो इलाज है वो लेंगे तो ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए।
1: जी और डॉक्टर साहब लगातार आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ लगातार बना हुआ है। तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मान सिंह जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर, सीजीएचएस न्यू दिल्ली। आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन विषय पर। डॉक्टर रेहान सर, आपसे मेरा सवाल है कि इनहेलर लेने का सही ढंग क्या है और प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए इसके इस्तेमाल में?
2: देखिए, इनहेलर लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
1: जी,
2: पहले आप स्ट्रेट मैन सीधा होके बैठना है, देन जो इनहेलर पंप होता है उसको हाथ

0: लेना है, देन माउथ स्पेसर जो होता है उसको यूज करिए माउथ में रख के, फिर 2 से 3 बार पहले धीरे धीरे गहरी सांस छोड़नी है, बाहर सांस छोड़नी है, उसके बाद में 2 से 3 पफ लेने हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, उसके बाद में थोड़ा होल्ड लेना है 4 से 5 सेकंड का, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सहेल करना है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो रेगुलर स्टीरॉयड यूज करते हैं उनके अंदर जो ओरल कैंडिडियासिस जो कि फंगल इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनहेलर यूज करने के बाद में माउथ वॉश करना या गार्गल करना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत छोटी सी बात डॉक्टर साहब ने बताई है, लेकिन श्रोताओं इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारी जो आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखिए। हमारे एक कॉलर फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी, मेरे को अस्थमा है काफी साल से, तो एक बार दमा की शिकायत हो गई थी
1: जी।
2: तो ये किस कारण होती है? और दूसरा सवाल है कि मैं पंप लेती दो, एक तो कैप्सूल डाल के लेती एक दवाई वाला लेती हूँ, तो ये कहते हैं कि पंप ज्यादा नहीं लिए ये गलत है, नहीं लेना चाहिए, सही है गलत है?
1: जी, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। आप अपना शुभ नाम बता दें मैम, कहाँ से बोल रही हैं?
2: हम कमलेश्वर में ब्लाइंड हूँ।
1: जी, कोई बात नहीं, हाँ बताएं कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: ग्रेटर नोएडा से।
1: ग्रेटर नोएडा से। जी, डॉक्टर साहब हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं और आपका सवाल जो है उसका जवाब जरूर देंगे। बताएं और कुछ कहना चाह रही थी आप?
2: और मैम मेरे सर में ना इतना दर्द होता है, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहती, सर में बहुत दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती, दिन में आती, इसका क्या कारण है? आंखों दिन नींद भरी रहती है और रात को आती नहीं है, धूप में खुल जाती
1: है। ये भी कोई अस्थमा का लक्षण है डॉक्टर साहब?
3: आपका जो सर दर्द है, नींद नहीं आती है, इसका अस्थमा से कोई जोड़ नहीं है, अस्थमा का कोई लक्षण नहीं है। अगर आपको जुकाम भी रहता है और आंख के आसपास भारीपन रहते हैं तो हाँ ये साइनस का हो सकता है जो कि अस्थमा के साथ जुड़ा हो सकता है। जहां तक अस्थमा का आपका पंप सही तरीके से लेना है ज्यादा है या कम है, डॉक्टर रेहान जवाब दे देंगे।
2: पंप लेती हूँ सांस में, दो पंप लेती हूँ, एक तो कैप्सूल डाल के एक दवाई वाला, एक छोटी सी गोली खाती हूँ। तो मैंने टेस्ट भी कराया था तो बोलते हैं मेरे सीने में भी दर्द होता है तो नॉर्मल आता है, सीटी स्कैन कराती हूँ तो मैं सब नॉर्मल आता है मेरा, तो सीने में दर्द भी रहता है मेरे।
0: जी जी जी, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि जो पंप होता है वो बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से लेना है और रेगुलर लेना है।
2: अच्छा,
0: हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यही सबसे सबसे जो बेहतरीन इलाज है अस्थमा का वो पंप ही होता है, तो पंप आपको रेगुलर लेना है और इसको अवॉइड नहीं करना आपको बिल्कुल भी।
1: जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, इनको आपने बता दिया है। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, ये छवि जी का मैसेज है, लिख रही है, आई एम छवि चौधरी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। कैन वी डू हार्श स्पोर्ट्स इन अस्थमा? डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्क्यू इनहेलर।
0: देखिए, जो इनका पहला सवाल है हार्श स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो बेसिकली अवॉइड ही करनी चाहिए क्योंकि ये अस्थमा का अटैक हो सकता है। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है कंट्रोलर और रेस्क्यूअर, ये काफी बढ़िया सवाल है। जो कंट्रोल, एक तो होता है रिलीवर मेडिसिन वो होती है जो कि जब अस्थमा का अटैक होता है उस टाइम हम यूज करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल हो गया, वो रिलीवर मेडिसिन होता है। एक होता है कंट्रोलर वो होता है कि अगले अटैक को होने से रोकता है या लंबे टाइम तक डिजीज को प्रिवेंट करता है, तो उसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी स्टीरॉइड्स जो कि इन्फ्लामेटरी जो इनहेलर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं।
1: तो बहुत सारी बातें श्रोताओं आपको जानने को मिल रही है, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: ओम शांति।
1: ओम शांति सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी सर, बताएं क्या सवाल है?
4: ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है और ब्रंकल अस्थमा का कोई वैक्सीन भी बना है कि नहीं?
0: देखिए, जैसा कि आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक तो कोई
3: है नहीं है,
0: अभी तो कुछ है नहीं, हो सकता है आगे इस पे अभी रिसर्च चल रही हो, आगे आ जाए।
1: तो जागरूक लगातार हम आपको कर रहे हैं कि किस तरह से आप अस्थमा से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशन आपको बरतने हैं और किस तरह से आपकी जीवनचर्या हो और क्या क्या आपको खुद सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन अपने विशेषज्ञों के माध्यम से करवा सकते हैं लेकिन आगे जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मौसम बदलता है और खान पान, खास करके मुझे लगता है कि जिनको अस्थमा की शिकायत है खान पान पर भी कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है क्या, कि ठंडी चीजों से बचना है, गर्मी का समय है तो लोग फ्रिज का पानी नॉर्मली घर में घुसते ही पी लेते हैं, क्या इन सब चीजों से बचना है?

0: बिल्कुल, इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं बहुत प्रोन होते हैं इन चीजों से। अगर थोड़ी भी ठंडी हवा लग गई या फिर सुबह मॉर्निंग में जैसे ठंडी हवा होती है, वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठंडा पानी हो गया, वो एक तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। तो रेगुलर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाइए, रेगुलर हल्का फुल्का वॉक कीजिए, तो डिजीज कंट्रोल में रहती है और प्रॉपर इस्तेमाल करिए इनहेलर का जो रहता है।
1: लेकिन अब एक समस्या आती है कि अगर मेडिसिन शुरू हो गई है तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी या क्या, कितने समय तक ट्रीटमेंट होता है, कुछ ऐसा भी नियत होती है चीजें?
0: देखिए, अगर लंबे टाइम तक, जैसे जो गाइडलाइन जो कुछ कहती है कि अगर 5 दिन से ज्यादा हफ्ते में अगर उसको सिम्टम्स रहते हैं तो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेडिसिन छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो अगर एक्यूट अटैक आता है जब भी, तो उस टाइम इनहेलर का प्रॉपर इस्तेमाल करें।
1: तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और हमारे पास आया हुआ है मैसेज। ये है, लिख रहे हैं, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम वीरू बख्शी है और अपनी उम्र ये 62 साल लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि मेरे साथ एक माइनर कुछ इन्होंने दिक्कत बताई है कि इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा क्यों है जानना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ मौसम का असर है या ऐसा कुछ इन्होंने बाकी दिक्कतें नहीं लिखी हुई हैं?
1: देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि सांस लेने में दिक्कत है
0: जी,
1: तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक बार आप जल्दी से जल्दी फिजिशियन से मिलिए, वो एक बेसिक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उससे वो पता चल जाएगा कि बेसिकली ये सांस की बीमारी है या कुछ और कारण है।
0: जी, घबराहट भी इन्होंने लिखी हुई है कि इनको घबराहट होती है, ऐसा किस वजह से होता है? मतलब अस्थमा जैसी कोई समस्या तो नहीं है, इनको ये जानना चाहते हैं।
1: उसी को रूल आउट करने के लिए बेसिकली आपको वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी।
0: जी, तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चर्चा आप लोगों से जारी है, क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो गर्मी का मौसम है और कैसी सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि खान पान आपने बता दिया है, और कैसी दिनचर्या हो, क्या व्यायाम भी होना चाहिए, किस तरह का व्यायाम होना चाहिए?
2: जैसे अभी पिछला सवाल का जवाब दिया था, हार्श स्पॉट्स, तेज एक्सरसाइज से जब अक्यूट अस्थमा हो रहा हो वो अवॉइड करना चाहिए। जेंटल व्यायाम जरूरी है क्योंकि उससे वो फेफड़ों की पार बढ़ेगी। कहते हैं आधा घंटा चलना या जो एरोबिक है, बहुत हार्श नहीं करें, पर रेगुलर एक्सरसाइज से अस्थमा के कंट्रोल में काफी फायदा आएगा।
0: हमारे एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: ओम शांति।
0: ओम शांति।
3: हाँ, मेरा, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरा इस सवाल का उत्तर छूट गया था।
0: जी, अभी बात हुई थी आपसे, बताएं क्या सवाल छूट गया था आपका?
3: जी, मैंने कहा था कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है?
1: देखिए, जो ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बेसिकली टेम्पररी होती है और उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो सूजन होती है, वो रिवर्सिबल होती है। जबकि जो ब्रोंकाइटिस है वो एक क्रोनिक बीमारी है और उसमें जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। तो मेजर डिफरेंस ये है दोनों में, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है।
0: तो चलिए, आपका जो सवाल था उसका जवाब भी आपको

0: आपकी दूर हो गई है। और अगला जो हमारे पास मैसेज है, लिख रहे हैं दोनों डॉक्टर साहब और एंकर मैम को, गुड आफ्टरनून मैम। अस्थमा में पॉल्यूशन का क्या रोल है? अपने क्षेत्र में स्वच्छता रखने से क्या कोई फर्क पड़ता है, कृपा करके बताएं। नरदेव सिंह चौहान जी कोटद्वार उत्तराखंड से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कर रहे हैं।
1: देखिए, जो साफ सफाई अगर रखेंगे हम तो डस्ट होगा, जो पोल्यूशन होगा वो कम होगा। तो बेसिकली जो ट्रिगरिंग फैक्टर होंगे वो हम कम कर रहे हैं, तो उससे अस्थमा बेहतर रहेगा, जिससे कि अस्थमा कंट्रोलेबल रहेगा
0: जी।
1: तो साफ सफाई का तो हमें हमेशा ही विशेष ध्यान रखना चाहिए,
0: ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है, मैसेज है हमारे पास। गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि टीबी और अस्थमा में क्या अंतर है? और मेरा लड़का 11 साल का है, 3 साल से नाक से ब्लड आता है। ईएसआई में उसका सारा इलाज हुआ है, मगर नाक जब बंद होने लगती है तो कोड की वजह से ब्लड

0: पेट का तेजाब ऊपर आके जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है,
1: जी
0: इन सबको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लक्षण है सांस में दिक्कत और सीटी। क्यों?
1: जी, ये एपिसोडिक रहता है, ये तीनों
0: हाँ,
1: सिम्टम जो रहते हैं
0: ये
1: एपिसोडिक रहते हैं।
0: एपिसोडिक, अगर अकेले लंबी चल रही बिना इन तीनों के सिम्टम के, तब ये अस्थमा नहीं
1: नहीं हो
0: दिख
1: सकता जी।
0: सकता।
1: अब डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि हृदय रोग में और अस्थमा में, दोनों में ही दिक्कत होती है सांस लेने में और हार्ट में, तो कैसे इसका

0: मिले हैं और जो भी पेशेंट है उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत गौर से कार्यक्रम सुना होगा। अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो भी जानकारी आप तक पहुंची है तो उसका लाभ आपने जरूर लिया होगा। चलते चलते बस यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, क्योंकि आरोग्यम परम धनम। बाकी धन के प्रति हम सजग रहते हैं लेकिन इस धन के प्रति हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। आपका साथ देने के लिए लगातार रेडियो डॉक्टर आपके साथ है, इसका लाभ लीजिए और कार्यक्रम सुनते रहिए। आपको बता दें कि आज हमने जिस विषय पर चर्चा की वो था अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद थे। आप थे डॉक्टर अजीत मानसिंह जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी जी, मेडिकल ऑफिसर सीजीएचएस न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
1: आपका धन्यवाद कि हमें बुलाया।
2: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का और हमारे श्रोताओं का भी जो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। याद

0: नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही रेनबो पर।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री शाम को गुजरात के सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा। भीषण गर्मी के कारण 22 से 28 जून के दौरान 2000 से अधिक मौतें हुईं। प्रधानमंत्री ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर कोइको फुजिमोरू को बधाई दी है। और अंत में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में पहुंचा। और अंत में मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका आरजे चेतन। आज हम थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। बहुप्रतिभा सिद्धांत क्या है, आपके सीखने की शैली। बहुप्रतिभा सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है। किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रतिभाएं सूत्र रूप में रखी। उनकी सूची अस्थाई थी। पहली 2 को स्कूल में विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। अगली 3 सामान्यतः कला से जोड़ी जाती है एवं अंतिम 2 वे जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत प्रतिभा कहा।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: बहुप्रतिभा के प्रकार, दृश्य संबंधी, स्थानिक प्रतिभा, दृश्य को समझने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोग चित्र के रूप में सोचते हैं एवं जानकारी को रखने के लिए इन्हें स्पष्ट मानसिक प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें नक्शों, चार्ट, चित्रों, वीडियो तथा फिल्म देखने में आनंद आता है। उनके कौशल में शामिल है पहेलियां बनाना, पढ़ना लिखना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, अच्छा दिशाबोध, स्केच बनाना, दृष्टि संबंधी रूप कलाकार, स्कल्प्टर या पेंटर बनना, प्रतिबिंबों में हेर फेर, निर्माण दृढ़ करना, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन, दृष्टि संबंधी प्रतिबिंबों व्याख्या करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां नाविक, शिल्पकार, दृष्टि कलाकार यानी चित्रकार, अन्वेषक, आर्किटेक्ट, आंतरिक डिजाइनर्स, मैकेनिक, इंजीनियर्स, शाब्दिक। नेक्स्ट ऑन लिस्ट दोस्तों, वी हैव शाब्दिक यानी बहुभाषा प्रतिभा, शब्दों तथा भाषा के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोगों में अंकेक्षण कौशल अत्यंत विकसित होता है तथा सामान्यतः ये शिष्ट वक्ता होते हैं। ये चित्रों के बजाय शब्दों में सोचते हैं। उनके कौशल में शामिल है सुनना, बोलना, लिखना।

कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शिक्षण, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, जानकारी याद रखना, किसी को अपने विचार मनवाना, भाषा के उपयोग का विश्लेषण, ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां हैं दोस्तों। कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, राजनीतिक, अनुवादक। मूविंग अहेड वी हैव तार्किक गणितीय प्रतिभा, यानी वजह, तर्क एवं संख्याओं के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले तार्किक एवं संख्यागत तरीके से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध बैठाना है। अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमेशा जिज्ञासु। ऐसे सीखने वाले कई प्रश्न पूछते हैं एवं प्रयोग करना पसंद करते हैं। उनके कौशल में शामिल है समस्याएं हल करना, जानकारी को वर्गों एवं श्रेणी में बांटना, परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए गुण सिद्धांत के स्थित कार्य करना, कारणों की लंबी कड़ी को लेकर अनुक्रम बनाना, नियंत्रित प्रयोग करना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न एवं विस्मय करना, जटिल गणितीय गणनाएं करना, ज्यामितीय आकारों के साथ कार्य करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखापाल, गणितज्ञ।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव दैहिक यानी इंद्रियगत प्रतिभा, शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को दक्षता पूर्वक पकड़ने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले अपने आप को हलचल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन्हें संतुलन एवं हाथ से आंख के समन्वय का अच्छा बोध होता है। उदाहरण के लिए गेंद खेलना, बैलेंसिंग बीम्स, अपने आसपास की जगह के संपर्क में ये जानकारी को याद एवं प्रसंस्कृत करने में सक्षम होते हैं। उनके कौशल में शामिल है नृत्य, शारीरिक समन्वय, खेल कूद, स्वयं द्वारा प्रयोग, शारीरिक भाषा का उपयोग, कला, अभिनय, हाथों का उपयोग कर रचना, शरीर के माध्यम से मन के भावों को व्यक्त करना। करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों, एथलीट, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, नर्तक, अभिनेता, कारीगर। मूविंग अहेड वी हैव संगीतज्ञ ताल ग्रही प्रतिभा, संगीत के निर्माण एवं प्रशंसा की क्षमता। संगीत में रुचि रखने वाले ऐसे विद्यार्थी ध्वनि, ताल एवं पैटर्न के रूप में सोचते हैं। वे संगीत में जो भी सुनते हैं उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह प्रशंसा हो या आलोचना। इनमें से कई विद्यार्थी पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए झिंगूर, घंटिया, नल से टपकता पानी। इनके कौशल में शामिल है गाना, सीटी बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, स्वर लहरी पहचानना, संगीत रचना, मेलोडी याद रखना, ताल एवं संगीत का ढांचा याद रखना। करियर के लिए संभव मार्ग है वादक, डिस्क जॉकी, गायक, संगीतकार। अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा, अन्य को समझना एवं संबंध स्थापित करने की प्रतिभा। ये विद्यार्थी बातों को अन्य लोगों के नजरिए से देखते हैं, ये समझने के लिए कि वे क्या सोच रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं। इनमें अक्सर भावनाओं, इरादों एवं उत्प्रेरणा को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। वे बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं, हालांकि कभी कभी वे गड़बड़ का सहारा भी लेते हैं। आमतौर पर वे समूह में शांत बनाए रखने की चेष्टा करते हैं एवं सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। वे अन्य से संवाद आरंभ करने के लिए वाक जैसे कि बोलना एवं अवाक जैसे कि नजर मिलाना, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। उनके कौशल में शामिल है दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, दोहरे परिप्रेक्ष्य, समानुभूति का उपयोग करते हुए अन्य लोगों के मूड और भावनाओं को समझना।

लोगों के साथ सहयोग, लोगों की मनोदशा प्रोत्साहित एवं इरादों पर ध्यान देना, मौखिक रूप से और गैर संचार मौखिक रूप से संवाद करना, विश्वास का निर्माण, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष सुलझाना, अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना। करियर के लिए संभव मार्ग है परामर्शदाता यानी काउंसलर, विक्रेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी। तो दोस्तों, ये थे थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज का लम्हे प्रोग्राम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

जी बिल्कुल, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल प्रोग्राम अल्फाजन के साथ, मैं कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ।

जी साहब, ये मन जो है ना, छोटा सा प्यारा सा, वो भागता रहता है, लेकिन कंट्रोल भी तो हमें ही करना पड़ता है। कई बार इच्छा होती है ना कि फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड इन सबसे कहीं दूर चले जाएं। शायद हम लोग पूरे सप्ताह इन स्क्रीन टाइम से थके होते हैं और ज़रूरत होती है सुकून की। और इसके लिए FM रेनबो है ना आपके साथ, दिल से दिल तक आप जुड़े होते हैं FM रेनबो पर।

वाकई दोस्तों मौसम जो है बहुत ही प्यारा है और पीने का मौसम है, और इस प्यारे से मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात हो। अपने परिवार के साथ मिल बैठकर चाय पीने का जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। और माना कि मौसम अच्छा है और आप सैटरडे पार्टी करने के मूड में हैं, लेकिन सावधानी से, बहुत ही धैर्य से ड्राइव करें, सुरक्षित घर पहुंचे। यही तो हम सबकी ख्वाहिश होती है ना कि हम सभी सुरक्षित रहें, अपने आसपास के जितने लोग हैं वो सभी सुरक्षित रहें और सभी खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें इंडिया

0: host.gov.in.
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन.
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर.

जी हम बिल्कुल आ गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है अल फजन। वैसे तो दोस्तों हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या दूसरों को भी हम खुश रखना चाहते हैं?

ऐसी कोशिश हमारी होती है, शायद नहीं। दूसरों को खुश रखने के मामले में हम लोग थोड़े से स्वार्थी होते हैं, थोड़े से मतलबी होते जा रहे हैं, है ना? ऐसा होता है ना, हम अपने आसपास देखते हैं कि सिर्फ लोग चाहते हैं कि वो खुश रहें, उनके बच्चे को ही सब कुछ मिले, और इन्हीं बातों को लेकर लोग चिढ़ते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। अगर दोस्तों क्या होगा अगर हम चाहेंगे कि सबको खुशी मिले, सबको सेहत मिले, सबको तरक्की मिले, तो शायद हम बहुत ही एक मीठा सा माहौल बनाए रखेंगे अपने आसपास, अपने घर परिवार में, अपने समाज में, है ना? प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन, मैं आपके साथ कंचन।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फजन। और दोस्तों, घर परिवार से लेकर दोस्तों की मंडली तक में हम देखते हैं कि एक दूसरे को जैसे नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती है। एक दूसरे पर व्यंग्य नहीं मारा तो क्या किया, है ना। लोग सोचते हैं कि कितना बड़ा काम कर लिया, लेकिन सोचने वाली बात है कि दूसरे को नीचा दिखाकर आखिर क्या हो जाता है। हम अपने अंदर जो है नकारात्मक विचार को पालते रहते हैं, और बड़प्पन तो इस बात में है जब हम सबके लिए बहुत मीठे बने रहें। जो लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो शायद कहीं ना कहीं अपने अंदर ईर्ष्या और जलन की भावना पालते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और ऐसे लोगों से सावधान भी रहने की ज़रूरत है। आप अपनी कोई भी बात बताने से पहले 10 बार सोचें, थोड़ा सा ठहरे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने आपके ऊपर व्यंग्य मारा तो आप और भी बिल्कुल तीखे स्वर अपना लें, है ना। बहुत ही मीठे बनकर मुस्कुराते हुए उनका सामना कीजिए, क्योंकि आप तो आप रहेंगे, आपकी मुस्कान आपकी रहेगी। आप अगर मीठे हैं तो आप सबके लिए बहुत बहुत मीठे बने रहेंगे। प्रोग्राम चल रहा है अल्फजन, मैं आपके साथ कंचन।

FM रेनबो पर भी ये सिलसिला चलता रहता है। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन, लेकिन इसके ठीक बाद 5 बजे आप सुनेंगे सिटी लाइट्स और इसमें आपकी दोस्त रहेंगी कोमल। 6 बजे होगा प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स और इसमें प्रियंका त्रिपाठी आपका साथ देगी। सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

जी बिल्कुल, कामना करते हैं कि आपके घर परिवार में सब लोग फर्स्ट क्लास रहें और अपने सकारात्मक सोच के साथ आप अपने घर परिवार को, दोस्तों की मंडली को बिल्कुल सजाते रहें, संवारते रहें। मैं कंचन यहीं पर

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। अब सुनिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी शाम को गुजरात के सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना काबो वार्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में पहुंच गया है और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, नमस्कार दिल्ली और हेलो एनसीआर। ऑफिस से घर लौट रहे हैं या घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं, आपकी शाम में आपका साथी बन चुका है सिटी लाइट्स, और मैं हूँ आपकी दोस्त कोमल। अगले एक घंटे में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली सिर्फ चल नहीं रही बल्कि हर पल कुछ नया रच रही है। जरा सोचिए, मानसून दिल्ली पहुंच चुका है लेकिन बारिश अभी भी आंख मिचोली खेल रही है। आखिर कब तक बरसेंगे बादल ये खुलकर? आखिर आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या खास तौर से साउथ दिल्ली में रहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि अगले दो दिनों तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो इफेक्टेड रहने वाली है।

है तो कौन कौन से इलाके हैं बताएंगे आपको प्रोग्राम में। और अगर आपको लगता है कि आपने आम की हर किस्म को देख लिया है तो जरा रुकिए जनाब, आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के उस फेस्टिवल के बारे में जहां आम सिर्फ फल नहीं बल्कि एक जश्न है। और अगर आपका मन कह रहा है लेट्स डू समथिंग डिफरेंट दिस वीकेंड, तो दिल्ली की शानदार आर्ट एग्जीबिशंस भी आपकी वीकेंड लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। यानी वेदर भी है और वाटर भी, वीकेंड प्लानर भी और दिल्ली का पूरा वाइब भी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, रेडियो की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि अगले एक घंटे तक दिल्ली बोलेगी और सिटी लाइट्स आपको उससे मिलवाएगा। मैं हूं कोमल और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और हमें आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर के माध्यम से भी और वेव्स ओटीजी प्लेटफॉर्म पर भी हम आप सभी के लिए मौजूद हैं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दिल्ली की सड़कों पर आपकी ड्राइव और मौसम की करवट पर हमारी नजर। मैं हूं कोमल और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और दोस्तों, दिल्ली वालों, क्या आपको भी लग रहा है कि मॉनसून ने सीन तो कर दिया लेकिन रिप्लाई जो है वो अभी तक नहीं किया है? जी हाँ, 2 जुलाई को मॉनसून ने दिल्ली में दस्तक तो दे दी है लेकिन अभी तक झमाझम बारिश का इंतजार हम सभी को है। आज दिन भर उमस ने लोगों को खूब परेशान किया, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और कई जगहों पर तो अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी मौसम ने वो राहत नहीं अभी तक हमें दी है जिसे हम सभी महसूस कर रहे हैं या जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो आप के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले समय में यानी कल से 5 जुलाई से बारिश की रफ्तार जो है वो बढ़ सकती है और 6-7 जुलाई को अच्छी झमाझम बारिश एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। यानी होल्ड ऑन दिल्ली, द रियल मॉनसून शो इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। बारिश के साथ साथ तापमान में भी राहत देखने के लिए मिलेगी क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो अधिकतम तापमान है 31 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जिससे दिन और रात दोनों जो है वो ज्यादा सुहाने हो सकते हैं। अगर आप भी इस वीकेंड बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो छाता अपने साथ जरूर रखिएगा क्योंकि बारिश कभी भी आपकी प्लानिंग में प्लेजेंट सरप्राइज बनकर शामिल हो सकती है। सिटी लाइट्स, जहां मौसम की अपडेट सिर्फ खबर नहीं, आपकी शाम की तैयारी भी हो। तो बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, बादल तैयार हैं, हवाएं भी साथ हैं और बारिश की अब बारी है।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है सैटेलाइट। शहर की हर जरूरी सूचना सबसे पहले आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स पर और मैं हूं कोमल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर, क्योंकि हम हैं म्यूजिकली योर्स। और दिल्ली वालों, अगर आपका इलाका दक्षिणी या दक्षिण पूर्व दिल्ली में है तो अगला अपडेट आपके बहुत काम का हो सकता है, सो डोंट मिस दिस। 6 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो अफेक्टेड रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की नई पाइपलाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने का जो है वो काम शुरू कर दिया है और मेन रूप से जो 6 और 7 जुलाई है इन दोनों दिनों तक पानी की सप्लाई जो है वो प्रभावित रहने वाली है। वो कौन कौन से इलाके हैं आपको बता देते हैं। ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, मालवीय नगर, साकेत, सीआर पार्क, कालकाजी, सरिता विहार, जसोला, बदरपुर, मदनपुर खादर, सराय काले खां आश्रम, जंगपुरा, श्रीनिवासपुरी जैसे बहुत सारे इलाके जो आसपास में हैं वो सभी जो है इससे इफेक्टेड रहेंगे। तो आप सभी के लिए एक सिंपल सा टिप, आज ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी को स्टोर कर लीजिए ताकि अगले दो दिनों तक पानी की किसी भी तरह से जो परेशानी है वो आपको ना झेलनी पड़े। अगर किसी तरह की आपात स्थिति आपके आसपास हो तो दिल्ली जल बोर्ड का जो वाटर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1916 पर आप संपर्क कर सकते हैं सिटी लाइट्स, क्योंकि छोटी सी जानकारी जो है वो बड़े परेशानी से आपको बचा सकती है। तो अपने पड़ोसियों और परिवार वालों के साथ ये जानकारी जरूर साझा कीजिए और थोड़ी सी तैयारी जो है वो आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, जहां हर अपडेट है आपकी सुविधा के नाम।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: समझे हैं?
1: हाँ, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट। और अगर हम आपको समय बताएं, रेनबो की घड़ी में समय हुआ है इस वक्त 5:36 हो चुके हैं और अब आप सभी के लिए जो है एक हेल्थ अपडेट हम लेकर के आए हैं। साथियों, अगर आप या आपके अपने कभी भी जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं पर निर्भर रहते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है। जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को फिलहाल अस्थायी रूप से राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। वजह है जीटीबी की इमरजेंसी का बड़े स्तर पर रिनोवेशन और अपग्रेडेशन, ताकि आने वाले समय में मरीजों को और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। हालांकि अभी ट्रायल रन शुरू हो चुका है और पहले ही दिन जो है वो ऑर्थो और न्यूरो सर्जरी की सफल सर्जरी भी की गई है। लक्ष्य है कि 7 जुलाई तक पूरी इमरजेंसी सेवाएं चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ट्रांसफर कर दी जाएं। वहां पर 24/7 लैब, ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और करीब 160 बेड की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। सही जानकारी सही समय पर, क्योंकि जागरूक शहर ही सुरक्षित शहर बनाता है। तो दोस्तों, आपको या आपके किसी अपने परिचित को इमरजेंसी मेडिकल सहायता की जरूरत पड़े तो इस बदलाव की जानकारी जरूर याद रखिएगा।

0: रहना आंखों आंखों में ही रहना आंखों आंखों में ही रहना।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट, जहां हम बात कर रहे हैं शहर की हलचल की।

दोस्तों, अगर मैं कहूं कि अगर आपने अंगूर जितना छोटा आम देखा है, तो क्या इसके साथ साथ आपने पपीते जितना बड़ा आम देखा है? तो आप शायद कहेंगे, कोमल, यू आर किडिंग, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सच है। दरअसल इन दिनों दिल्ली में सिर्फ गर्मी नहीं, मैंगो मैजिक भी परोसा जा रहा है। जनकपुरी के दिल्ली हाट में चल रहा है 35वां मैंगो फेस्टिवल, जहां देश भर से आई 400 से ज्यादा किस्मों के आम एक ही छत के नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे महज 5 से 10 ग्राम का अंगूर तला आम और 2.5 से 3 किलो तक वजन वाला विशाल नूरजहां आम भी। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग नाम के, जैसे रहमत बीड़ी वाला, अफीम, टॉप, टॉमी एटकिंग्स, गुलाब खास, हिमसागर जैसे दिलचस्प नाम वाले आम भी इस फेस्टिवल में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको खाने के लिए भी, चखने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे आम मिलेंगे। तो आप अगर आम की शौकीन हैं, तो आम का ये मौसम और ये फेस्टिवल जाने से पहले ज़रूर आप पहुंच जाइए दिल्ली हाट जनकपुरी में। अगर आप आम के शौकीन हैं या बस कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो दोपहर 12 से रात 9 बजे तक इस मैंगो फेस्टिवल का हिस्सा आप बन सकते हैं। मौका कल यानी 5 जुलाई तक ही है। सिटी लाइट्स के साथ हर शाम बन जाए आम नहीं खास। तो इस वीकेंड मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर निकलिए और आम की खुशबू, रंग और स्वाद के साथ इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बन जाइए। मैं हूं कोमल, आपकी शाम के साथ ही। ऐसे ही दिल्ली एनसीआर की हर खास खबर, हर रंग और हर हलचल के लिए आप जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: सिटी लाइट सुन रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं कोमल। और टाइम बताएं आपको तो 5:50 हो चुके हैं। और दोस्तों, दिल्ली सिर्फ दौड़ती नहीं है, रंगों कहानियों और कला से सांस भी लेती है। मैं हूं कोमल और ये है व्हाट्स हैपनिंग इन दिल्ली सिर्फ सिटी लाइट्स पर। जी हां, चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कौन कौन सी इवेंट है जो कि आपके वीकेंड को शानदार बना सकती हैं। अगर आपका वीकेंड सिर्फ मॉल या मूवी तक सीमित नहीं है और आपको आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी पसंद है, तो दिल्ली आज आपके लिए एक शानदार कैनवस लेकर के तैयार है। सबसे पहले चलते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहां पैनोरामा 24 नाम की ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन में 24 कलाकारों की खूबसूरत पेंटिंग्स और आर्टवर्क आपका इंतजार कर रहा है। यही एक और खास प्रदर्शनी भी बनारस घाट इन माय आईज के नाम से लगी है, जहां कलाकार चिन्मय पंडित ने अपनी नजरों से बनारस के घाटों की खूबसूरती को कैनवस पर उतारा है। और अगर आपको कंटेम्पररी आर्ट पसंद है तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में न्यू अर्बन अवतार प्रदर्शनी में जरूर जाइएगा। बदलते शहर, बदलती जिंदगी और बदलते समाज की झलक की हर चित्र आपको यहां पर दिखाई देंगे। और दोस्तों, अगर आप कला में भावनाओं को तलाशते हैं तो त्रिवेणी कला संगम में बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी आपका इंतजार कर रही है। एक बहता हुआ दरिया आपका इंतजार कर रही है, जहां रंगों के साथ जिंदगी के कई एहसास भी बहते हुए नजर आएंगे। All these exhibitions are open from 11 AM to 7 PM. So if you are planning an evening that calm, creative and inspiring, Delhi has plenty offer. सिटी लाइट्स सुन रहे हैं आप और सिटी लाइट्स, क्योंकि शहर का असली जो खूबसूरती है उसकी सड़कों में नहीं बल्कि उसकी संस्कृति में भी वो बसती है। तो इस वीकेंड थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, कला से मिलिए, कलाकारों से जुड़िए और दिल्ली को एक नए नज़रिए से देखिए। मैं हूं आपके साथ कोमल, मिलते रहेंगे दिल्ली NCR की ऐसी ही खास जगहों और शानदार अनुभवों के साथ सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर, प्रोग्राम सिटी लाइट में।

दोस्तों, देखते ही देखते आज की शाम भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली है। आपकी शाम का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं कोमला और आपसे चाहूंगी अब इजाजत। मिलूंगी फिर किसी दिन यूं ही रेनबो की तरंगों पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित सफर कीजिए और याद रखिए, दिल्ली की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, मुस्कुराहट की रफ्तार उससे भी तेज रखिए। नमस्कार, शुभ संध्या और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM पर, क्योंकि सिटी लाइट्स हर शाम दिल्ली के नाम।

और अब वक्त हो चुका है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के साणंद में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का भी उद्घाटन किया। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लंबी दूरी की कार्रवाई का हिस्सा बताया। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।

जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है आपका मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपकी अपनी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और ये जो धमाकेदार गाना सुना ना आपने, ये था मूवी फ्रॉम थामा, आयुष्मान खुराना, यस, और रश्मिका की फिल्म थी ये। अल्टीमेट मूवी थी, बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ये, और फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी भी चली और गाने भी बड़े सुपर डुपर हिट हुए इसके। लेकिन अभी जो सुपर डुपर हिट बात हो रही है ना, वो होनी है आपके और हमारे बीच में, पता है कैसे? देखिए, मैसेज मसाला मिक्स यानी कि आपको किसी एक टॉपिक पर अपनी राय शेयर करनी है, अपनी बात शेयर करनी है, अपने दो शब्द शेयर करने हैं। अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, ये बताइए, ये जो जुलाई का महीना होता है ना, ये मतलब एक तरीके से ऐसा महीना होता है जिसमें आप छुट्टियों से बाहर आके अब स्कूल शुरू हो रहे होते हैं, एक तरीके से नया सीजन शुरू हो रहा होता है, बारिश शुरू हो रही होती है, और जाहिर है कि भी कुछ ही दिनों में मानसून भी शायद आ ही जाएगा और बरसात शुरू हो जाएगी। तो मुझे बताइए ना, बारिश को लेकर कोई आपका बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है क्या? पॉजिटिव, क्यूट सा, स्वीट सा एक्सपीरियंस बचपन से लेकर अभी तक का, अगर कोई प्यारा सा एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए ना मेरे साथ। नंबर आपको पता है, ये 9868107070, हिंदी भी बता दूं क्या? ओके, 9868107070 शेयर कीजिए मेरे साथ। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़े खूबसूरत सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वेलकम टू जंगल।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

यस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन मैसेज मसाला मिक्स. मैं हूं आपके साथ प्रियंका. जैसे कि आप सभी जानते हैं नंबर मैंने आपको बता दिया 9868107070. इसमें आपको मेरे साथ ये शेयर करना है कि भाई आपका जो एक तरीके से ये जो टाइम होता है ना मानसून का, उसमें बारिश रिलेटेड आपकी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है. पूछा है मैंने, जवाब भी आया मेरे पास, ऐसी बात नहीं है जी. और इसमें जो जवाब आया ना हमारे पास, इसमें एक है ये मैसेज. गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो. थैंक यू. ओ माय गॉड. ओके अच्छा जी, इनको जो कैलाश खैर में बहुत इनके सुंदर गीत हम शामिल हो गए हैं और हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए जी. लगा दी अटेंडेंस कृष्ण जी. आपने आनंद विहार दिल्ली से ये मैसेज किया है, आपकी अटेंडेंस लगा दीजिए हमने. और ये एक और मैसेज है हमारे पास. ये मैसेज किसका है, ये भी है. और ये कहते हैं अमित हमारे पास. अमित कह रहे हैं कि भाई मेरा जो मानसून से रिलेटेड, बारिश से रिलेटेड जो उनकी सबसे प्यारी मेमोरीज है ना, वो ये है कि जब ये छोटे थे ना तो जो पानी कहीं पे इकट्ठा होता था घर के सामने, तो उसमें नाव बना बना के चलाते थे. ये तो ऑलमोस्ट सभी का है पता है. हर को जिसने भी मतलब 90s का बचपन जिया है ना, वो ये काम तो करता ही करता है. चाहे छत पर पानी जमा हो, चाहे घर के सामने पानी जमा हो, चाहे कहीं पर भी हो, मतलब वो जिसको नाव बनानी आती थी ना, वो ऐसी नाव बना के ना उसमें तैरा देते थे. और जिनको नहीं आती थी वो सीखते थे, अच्छा इसकी नाव कैसे आगे जा रही है, मैं ही बनाऊंगा अच्छे से बना के, फिर उसको भी ना तैरने के लिए छोड़ देते थे. दिस अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. और भाई जो भी कही है, मतलब आज के टाइम पे तो हर मोबाइल्स वगैरह हैं, बच्चे उसमें बिजी हो जाते हैं, बट यस की 90s का जो टाइम है ना, बेस्ट टाइम होता है. आपके पास भी अगर कोई मेमोरी है ना मानसून से रिलेटेड, बारिश से रिलेटेड, शेयर कीजिए मेरे साथ 9868107070 पर. और एक और गाना है मेरे पास आप सभी लोगों के लिए. एंजॉय दिस वन. आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेडबो पर.

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?

अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी हाँ, प्रोग्राम आपके चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर। और हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं ना, उसमें एक मैसेज ये भी है, ये है मैसेज, नाम नहीं लिखा हुआ यार, अनूप कुमार है झारखंड से। और पॉजिटिव वाइब्स अच्छी लगती है इनको, बारिश ही रेन की जो पॉजिटिव वाइब्स होती है वो इनको बड़ी पसंद आती है। मुझे भी सेम है। और ये एक मैसेज किसका है हमारे पास, ये मैसेज है हमारे पास, नाम कहाँ है, नाम है हितेंद्र और ये असम से मैसेज है। और इनका कहना ये है कि अच्छा, इन्होंने काफ़ी लंबा मैसेज भेजा है। अच्छा, जान है आकाशवाणी, प्यार है आकाशवाणी, लव है आकाशवाणी, बंधु है आकाशवाणी, दोस्त है आकाशवाणी, लाइव है आकाशवाणी। और वेरी, वैसे लाइन आपकी बड़ी खूबसूरत है, नो डाउट। इसके अलावा जो हमारे पास मैसेज है ये है फारूक अली खान फैजी फराज फरीन फरहान फारिया का, ताहिरा का मैसेज है ये। और गन्नौर यूपी से ये मैसेज आया हुआ है हमारे पास। इसके अलावा ये अनिल शर्मा का मैसेज है, सरता विहार से, कहते हैं कि मेरा तो बचपन स्कूल समय बारिश की घटना याद है, जब साथ ही स्कूल जाते थे, बीच में पढ़ने वाले नारे को जम करने की शर्त लगाई जाती थी और जब करने की बारी आती थी उसको दो साथी तो कम करके नारा क्रॉस करते थे, मगर हम मतलब अक्सर उसको पार करते हुए गिर जाते थे, कपड़े भी गंदे हो जाते थे, लेकिन बचपन की वही शैतानी वही हरकतें आज भी याद आती है इनको। दिस सो ब्यूटीफुल नाइस, सीरियसली बहुत सारी मेमोरीज हमारी जुड़ी हुई रहती हैं इनसे। दानिश का मैसेज हमारे पास कतौली से ये मैसेज, और कहते हैं कि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा ये मैसेज हमारे पास है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से, और कहते हैं कि बारिश से जुड़े बहुत सारी यादें हैं, बारिश के दिनों में बचपन में तो बारिश भीगे भागते हुए जाते थे स्कूल, और स्कूल के खिड़की से बारिश कैसे हो रही है देखते थे हम लोग, स्कूल के गांव के नदी को बाढ़ भी, मतलब प्लस माइनस सभी होते हैं यार, लेकिन हम तो प्लस देखते हैं ज़्यादातर। और इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास, ये है राजकुमार जी का महाराष्ट्र से, और कहते हैं कि बातचीत बड़ी अच्छा, ओके थैंक यू। और इसके ये भी एक मैसेज, ये किसका है भाई, ये है आनंद विहार से मैसेज है ये, और इन्होंने लिखा है जानकी हैं, कहती हैं कि बारिश की इन्हें सारी अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो मिट्टी की खुशबू, मतलब बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है ना वो इनको बहुत पसंद है। सेम है, और मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे सब कुछ एकदम धुल सा गया हो, बहुत ही प्यारा सा वो एक पूरा एम्बियंस होती है, एक माहौल होता है जिसे बड़ा खूबसूरत सा लगता है वो देखने के लिए, कि बारिश होने के बाद सब कुछ धुला धुला सा लगता है, सब कुछ एकदम प्यारा प्यारा सा लगता है। यही क्वालिटी है बारिश की जो सभी लोग इन्जॉय करते हैं, सभी लोगों को अच्छी लगती है। और अब एक सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, दिस इज़ ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हे बेबी, द टाइटल ट्रैक, एंजॉय दिस वन आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर। Oh,

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

जी हाँ, प्रोग्राम आपका चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और हमारे पास और भी मैसेजेस हैं। ये प्रदीप सलूजा जी का मैसेज हमारे पास जनकपुरी न्यू दिल्ली से है, और ओके ठीक है, दिस इज़ फाइन। एंड आवर मैसेजेस किस किस के होंगे वो भी देख लेते हैं। प्रियंका जी नमस्कार, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और विषय मुझे बचपन के खूबसूरत पलों की याद दिलाते हैं। बारिश होने की वजह से सड़क पर पानी हो गया था, सड़क पार एक महिला गुजर रही थी और मैंने पैरों से छुप करके महिला के कपड़े भिगोते थे, बहुत ही शरारती थे। इसका मतलब आप रवि जी मेरठ से हैं ये।

इतनी शरारत, ओके चलो यहाँ एक और है। यस, ये मैसेज किसका है? मेरी बरसात की बहुत सारी यादें हैं। पहले जब धान रोपने के लिए वर्षा नहीं होती तो हमें आंगन से आंगन में लुढ़काया जाता था और हमारे ऊपर से पानी डाला जाता था। लोगों का मत था कि ऐसा करने से बारिश होती है और कभी कभी बाढ़ भी जाती थी। और केले के थम को काट कर नाव बनाते थे उस समय स्कूल जाते समय। हाँ, रंजीत कुमार का मैसेज है हमारे पास अररी बिहार से। हाँ, बहुत सारी वैसे मान्यताएं हैं जिसमें बारिश के लिए लोग नहीं, बारिश मायने रखती है किसानों के लिए। और किसानों के लिए क्यों भाई, हमारे लिए भी। जब तक बारिश खेतों में पड़ेगी नहीं, अनाज आएगा ही नहीं, तो भाई शहरों तक भी अनाज वहीं से आता है ना, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है बारिश। और ये जोगिंदर सिंह का मैसेज हमारे पास कश्मीर से है। मानसून में जब स्कूल आते थे तो जानबूझ के भीगते थे और बहुत ही मस्ती किया करते थे ये बारिश, जब बचपन के टाइम में बारिश के समय। नाइस, यही तो मेमोरी होती है भाई, जो भी हो कुछ भी कहिए, अलग एक पूरा माहौल रहता है। कमल विष्ट का मैसेज हमारे पास दलशाद कॉलोनी डेली से, और ये कहते हैं कि सवाल है कि बुआ जी थी और बारिश में लड़का गिर गया था, उसके हाथ में थोड़ा सा मोड़ भी आ गया था। और चलिए, कोई ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सारी चीज़ें होती हैं। और ये बचपन की मुझे याद, साइकिल पर बैठकर छोड़ने जाते थे बारिश के समय में, और कागज़ से नाव बनाकर एक तरीके से धागा बांध के उसको लेकर जाते थे, और बड़ा आनंद आता था उन सभी मेमोरीज में। सोनू का मैसेज है ये बिजनौर से। और इसके अलावा आज का टॉपिक रिपीट क्या करें जी, अब तो खैर समय भी होने वाला है, पर यही है जी, बारिश की, मानसून से रिलेटेड, बरसात से रिलेटेड आपकी कुछ खूबसूरत मेमोरीज हैं तो शेयर कीजिए, ये टॉपिक आज का। अंशी हैं ये शर्मा हसनापुर से, मेरठ से इन्होंने मैसेज किया हुआ है। और एक मैसेज और है, मैसेज ये मैसेज प्रियंका 30 मिनट दो मैसेज शामिल किया हमने। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए ना पूरी लिस्ट लगा दी है हमने मैसेजेस की, एक एक करके सारी शामिल कर रहे हैं। हम कोशिश तो ये रहती है कि सारे के सारे मैसेजेस ले लें। और ये भुवनेश जी का मैसेज हमारे पास अशोक विहार दिल्ली से है, और ये कहते हैं कि टॉपिक इंटरेस्टिंग है। और इन्होंने कहा है कि एक दिन ये प्लेग्राउंड में फ्रेंड के साथ खेल रहे थे, बहुत ही गर्मी थी उस दौरान, और फेमस सॉन्ग था काले मेघा पानी तो बरसाओ, सडनली स्टार्टेड दैट रेन, मतलब इन्होंने गाना शुरू किया और बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, मतलब जब भी थोड़ा सा बारिश में लेट होगा ना तो हम आप ही को बोलेंगे कि प्लीज़ गाना गा दीजिए ताकि बारिश हो जाए। ये एक और संदीप जी का मैसेज हमारे पास पानम दिल्ली से है, और सोनिया शर्मा का बर्थडे है, और अभी हमारी तरफ से भी ढेर सारी हैप्पी बर्थडे आपको भी, विश यू अ गुड लक। और ये सरफराज आलम साहब का मैसेज है बिहार से ही मैसेज, और 20-22 सालों से सुन रहा हूँ और इनको बॉलीवुड ट्रेलर्स प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैसेजेस जब ले जाते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स नाइस, हमें भी आप लोगों के मैसेजेस लेने बहुत पसंद है। और रजत बेस मयूर विहार दिल्ली से हैं, और मुझे याद है कि बचपन की सुबह जब बारिश होती थी तो क्लास में कोई बच्चा नहीं आता था, और टीचर वो दिन या तो गाना या कहानी, ये बिल्कुल सही बात है, मतलब स्कूल का टाइम होता था ना जब बारिश हो जाती थी और बच्चे कम आते थे, तो उस दिन एक तरीके से ना फंक्शन ही हो जाता था वो टीचर्स डे टाइप का। और यहाँ पे एक और मैसेज है, ये है नवलू वरक है और मलपन गोवा से है, ये कह रहे हैं कि आज के टॉपिक वो 1993 में, और मेरे दोस्त स्कूल के रास्ते में नाले के बारिश के पानी में केला, अलग ही है आपका एक्सपीरियंस भी, डिफरेंट ही है बिल्कुल। हमने 6 टॉपिक रिलेट, अच्छा ओके फाइन ठीक है, दिस इज़ नाइस। और बरसात की बहुत सी यादें हैं, ये है ज़िला उज्जैन मध्य प्रदेश से मैसेज है भेरूलाल का, और कहते हैं कि बहुत सारी स्कूल की जुड़ी हुई यादें हैं, कीचड़ बहुत होता था और रास्ते में जिसकी वजह से जूते और कपड़े भी ख़राब हो जाते थे। चलिए कोई नहीं, होता है बारिश कभी कभार ही तो होती है, हमेशा तो नहीं होती ना। प्रवीण चौहान का मैसेज मध्य प्रदेश से है, और बारिश के समय में रेनबो बहुत सुंदर दिखाई देता है, नो डाउट, यस दिस इज सीरियसली बहुत ही प्यारा नज़र आता है रेनबो, नो डाउट। गुड्डू ठाकुर मध्य प्रदेश से उज्जैन ज़िले से इनका मैसेज है, गांव के मानसून में सबसे अच्छी मेमोरी होती है कि जब खेतों में पानी भर जाता था ना तो मैं पापा के साथ निकलता था और वहाँ पे हम लोग साथ में ही मतलब एक तरीके से इंजॉय करते थे रेन को, या दिस इज ट्रू। और ये मैसेज हमारे पास अच्छा ओके शुक्रिया। इसके अलावा और भी मैसेजेस हैं, लेते हैं अंशी शर्मा का भी मैसेज हमारे हस्तिनापुर से है, और पूछ रहे हैं कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और बारिश के बाद सबसे अच्छा ये पेड़ पौधे ग्रीन ग्रीन से दिखते थे ना, एकदम ऐसा लगता था नहा धो के आ गए उसी टाइप का। तो ये और भी मैसेज से लेंगे उनको, लेकिन अभी फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है मेरे पास आप सभी लोगों के लिए, इन्जॉय दिस सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटिफुल वन। और बारिश के टाइम पर तो अलग ही एक तरीके से मूड भी जो बारिश वाला होता है अलग बन जाता है, और

एक तरीके से देखा जाए तो हर गाने की अपनी एक खूबसूरती होती है, हर मौसम की अपनी एक खूबसूरती होती है। और ठीक उसी तरीके से जो ये सॉन्ग है ना, बिपाशा बसु ने इस फिल्म में एक्टिंग की है, दिस इज ब्यूटिफुल सॉन्ग, लवली सॉन्ग। श्रेया घोषाल माइंड ब्लोइंग सिंगर, नो डाउट, एंजॉय दिस वन।

यहाँ पे मोहम्मद इम्तियाज साहब को मैसेज है कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, कहते हैं कि भाई तो बारिश में काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं, जैसे मैं हमेशा छत पे सोता था और उस समय रात में फ्राइडे में नाइट में फिल्म देखा करते थे और घर से थोड़ी ही दूरी पे फिल्म देखने जाते थे, तब की बात बता रहे हैं ये, और अक्सर जब लेट हो जाती थी तो डांट भी इनकी पड़ती थी। ओके फुरकान साहब का है, मोहम्मद फुरकान साहब का मैसेज हमारा कांथ से, और कहते हैं टॉपिक अच्छा है, कभी बारिश होती है तो बारिश में ज़रूर नहाते हैं, अच्छा लगता है बारिश की आबो हवा इनको बड़ी प्यारी लगती है, हमें बारिश बड़ी खूबसूरत लगती है। और ये मैसेज तो हो गया प्रियंका, अच्छा थैंक यू वेरी मच, ये मैसेज है हमारे पास आदिल कमर गुनौर से, इनका मैसेज है हमारे पास। और एक और है ललित राणा जी का मैसेज पंजाब से, कहते हैं जी बचपन में बारिश का आने का मतलब पहले तो स्कूल से छुट्टी, उसके बाद छत पर पूरे मोहल्ले के बच्चों के साथ इकट्ठे होकर नहाते थे और फिर नाव की रेस लगाया करते थे, यस दिस इज द टाइम। और ये अच्छा ओके दिस इज ये मैसेज हमारे पास है। नवरू जी आपका मैसेज ले लिया है मैंने, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जी, मलपन गोस है ना, आई हैव टेकन ऑलरेडी। और ये दानिश का मैसेज है, जी हाँ ये भी हमने ले लिया है, बिल्कुल ठीक हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बारिश की यादें बचपन की जो ताज़ा हो जाती हैं, ये मैसेज अनिल का है, उषा मोहन जी का है, टिल्लू नायक जी का है, मधु नायक जी का है, और इन्होंने कहा है कि वो मासूम भरे पल होते हैं बचपन के, जब बारिश में एंजॉय किया करते थे, कागज़ के नाव बनाते थे, पकौड़े, यस बारिश हो और पकौड़े और चाय ना मिले, इम्पॉसिबल। ये भी एक टाइम हुआ करता था। सो दिस इज़ ऑल, आप जब बारिश हो मानसून आए तो ऐसे ही इन्जॉय कीजिए, खुश रहिए आप सभी लोग, ख्याल रखिए अपना और बारिश की हर बूंद को इन्जॉय कीजिए और ढेर सारी खुशियाँ आप सभी लोगों के लिए, यही कामना है, यही दुआ है, ख्याल रखिएगा अपना, फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी 8 बजे, डोंट फॉरगेट पार्टी टाइम में।

0: have to take a short and sweet break, so don't you go anywhere. I'll be right back after these messages. Break time.
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
2: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
2: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे, तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
3: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
7: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
7: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: Hey, welcome back, guys, to the show that's called Saturday Sizzler with me, your very own Satan. That's a shot for you, of course. Time is 2 o'clock. It's 26. Now it's 27. It's past 7 p.m. I have a small time where I can play the music song, and then I will be taking a break. So, yep, it's about time. Let me play that. This is Post Malone with Morgan Wallen singing I Had Some Help. Well, you can have some help from Google Lab and tell me the question that I asked you. Well, the prize money for FIFA World Cup 26 and the prize money for the Wimbledon 26. Till then, Post Malone.

0: Well, that was Roxette out there for you with Joyride. And I have to take another Joyride. And I mean to say another break. So don't you go away. I'll be right back after these messages. Do not, and I repeat that, do not touch that dial. I'll be right back after these messages.
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं. इस बार
2: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम.
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भाग

0: All right, that is Billie Eilish singing Birds of a Feather, but you know what? I have to take one more break, and I'll be right back after these messages. Well, only one message is break time.
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं. इस बार
2: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम.
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा.
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए.
2: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए.
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे, तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए.
0: Welcome back, guys, to the show that's called Saturday Sizzler with me, your very own Sid, and that's Sushant. And of course, time is 2 o'clock, 47 and a half minutes past 7 p.m. on the 4th of July, 2026. Oh, yeah, I have to say that your coffee with Sabrina is waiting on the table, of course. And off we go with that.

0: यस प्रोग्राम गोइंग ऑन म्यूजिक मस्ती और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और अब टाइम है धमाकेदार सॉन्ग्स के जिसका आपने एक झलक देख ली. यस दिस वन चाइना की मूवी थी और इसमें जो उर्मिला मातोंडकर का डांस है माइंड ब्लोइंग है जी, माइंड ब्लोइंग है. अच्छा एक और मूवी थी अगर आपको याद होगा ना, दिस इज बद्रीनाथ की दुल्हनिया. यस उसका ये जो रिमिक्स था ना, तम्मा तम्मा लोगी, दिस इज टू गुड. एंजॉय दिस वन आपके अपने रेडियो स्टेशन.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन.

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

बीवी नंबर वन फिल्म का ये सॉन्ग है, सलमान, सुष्मिता, करिश्मा कपूर। प्रॉपर ड्रामेटिक फिल्म लेकिन लेकिन ड्रामा लोगों को बड़ा पसंद आया था, लव्स दैट ड्रामा। मतलब जो फिल्म के अंदर पूरी स्टोरी थी ना, मतलब बड़ी प्यारी सी थी, और उसी के आसपास सिर्फ तुम फिल्म भी आई थी, सुष्मिता भी उसमें थी, और एक इमेज बन गई थी। लेकिन बाद में मतलब अलग ही एक कह जाता था कि भाई सुष्मिता इज साइड रोल, बट नो, मतलब कुछ फिल्में सुष्मिता ने ऐसी की हैं जिनमें एक स्टार के तौर पर उनको देखा गया, एक बिग स्टार के तौर पर देखा गया है। वेरी टैलेंटेड वुमेन, नो डाउट। और एक और फिल्म का सॉन्ग है मेरे पास, दिस इज स्त्री, और सॉन्ग कमरिया। एंजॉय दिस सॉन्ग।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

प्रोग्राम चल रहा है आपका म्यूजिक मस्ती, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और ये जो आपने सुना सॉन्ग पति पत्नी और वो आयुष्मान खुराना की मूवी आई है ये, और गुरु रंधावा इसमें हीर है, और मतलब फिल्म बड़ी अच्छी, लोगों को बड़ी काफी पसंद भी आई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो पुराने गानों के रिमिक्स किए जाते हैं, पुराने से इन द सेंस 90s के जो गानों को रिमिक्स किया गया है ना, दिस इज टू गुड। अब सूर्यवंशी जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें दिस वन सॉन्ग उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, एंजॉय दिस वन।

0: में धरती माँ के उत्थान में
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
0: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
0: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

वॉर फिल्म का ये सॉन्ग एंड दिस इज मतलब मूवी बड़ी अच्छी थी ऋतिक एंड ऑफकोर्स मतलब उनका डांस म्यूजिक एम्बियंस ऑल आर अमेजिंग. और अब जो सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ ना ये वैसे तो आपको मूवी याद है वो मिस्टर इंडिया एक फिल्म थी यस अनिल कपूर श्रीदेवी अल्टीमेट मूवी बड़ी पसंद आई लोगों को और स्पेशली वो सॉन्ग हवा हवाई दी दी दी दी दी दी. उस फिल्म का जो रिमिक्स है ना तुम्हारी सुलू फिल्म विद्या बालन की उसमें इसको रिमिक्स के तौर पे यूज किया मतलब एक नया लेटेस्ट वर्जन आया. नो डाउट दिस इज टू गुड. एंजॉय दिस वन आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कविता कृष्णमूर्ति सेम वॉइस नो चेंज.

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय

0: गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
0: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निःशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

वैसे जरा ध्यान रखिएगा, कभी कभार हाथ जल भी जाता है, इसलिए जब आग को टच करे ना, या जब टच ही मत करो यार, क्यों टच करना लेकिन फिर भी मतलब कहते हैं कि जब भी आप कहीं पर जा रहे हो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के। और वैसे तो फिल्मों में आजकल बड़े सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं, हॉरर हो जी, एक्शन हो जी, कॉमेडी हो जी, मतलब सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है नहीं जो छूट रहा हो। बट फिर भी दर्शकों के दिलों को

सो अल्फा लोगों को बड़ी पसंद आ रही है अभी, हालांकि आज फर्स्ट डे था, काफ़ी अच्छा ठीक ठाक उसका कलेक्शन बताया जा रहा है, लोग इसकी फिल्म की तारीफ भी कर रहे हैं। आलिया इज लुकिंग गुड, बट जब जो सबसे धमाकेदार एंट्री हुई है ना वो ये ऋतिक रोशन की, माय गॉड, लोग कह रहे थे अच्छा जी ये भी था इस फिल्म के अंदर। तो फिल्म की बड़ी तारीफ है, लेकिन जो भी कहिए 90s की फिल्में हों, 80s की फिल्में हों, या फिर आप जो 2001, 2002, 2003 जो भी जितने भी आप जो अपनी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बात कर लीजिए, मतलब कभी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं चूकते हैं, वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको जो एक सॉन्ग अगर आपको याद होगा, जब भी होली आती है तो वो सॉन्ग प्ले होता है, होलिया में उड़े रे गुलाल, तो उसी तरीके से इस फिल्म को भी ना, इस गाने को भी ना एक फिल्म में ट्राई किया गया, दिस इज द वेदा मूवी, और उसमें इसको टच दिया गया बिल्कुल रिमिक्स, एंड सीरियसली इट्स रॉक।

ओके होलिया के बाद अब जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना मेरे पास वो और भी धमाकेदार है। दबंग मूवी याद है ना आपको, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है ना, ऑल पार्ट दिस इज टू गुड। बट जब फर्स्ट पार्ट था ना, जो पहली वाली दबंग थी ना, उसको तो खैर बात ही अलग होती। देखो ओरिजिनल इज ओरिजिनल नो डाउट, और हालांकि सेकंड पार्ट भी इसके अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो दबंग पहली वाली थी ना, उसमें जो सॉन्ग था याद है आपको, ममता शर्मा की आवाज़ में, हाय हाय एंजॉय दिस वन। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेडियो पर मैं हूं आपके साथ प्रियंका।

जी जी जी जी खूब डांस हो रहा है, आई नो दैट, खूब मतलब इस पर डांस किया जा रहा है जहां पे भी आप हो ना, मुझे पता है, समझ में आ गया है। चलो अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात करूंगी। फिलहाल एक और धमाकेदार सॉन्ग के साथ छोड़े जा रही हूँ मैं आपको, ये भी ममता शर्मा की आवाज में। इंजॉय दिस सॉन्ग टू, और डांस करना है जम कर कीजिए, ठीक है फिर सर।

आपकी वाणी आकाशवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रात के 11 बज चुके हैं, सुनिए अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रूपये से अधिक का हुआ। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के

दुआ सलाम ज़रूरी है, बातों का सिलसिला शुरू होता है, ज़िंदगी में रंग भरते हैं, वक्त हसीन होता है।

रिश्तों को वक्त देना ज़रूरी है, जानना समझना ज़रूरी है, कहना सुनना ज़रूरी है, वरना खाली जगहों को गलत फहमियाँ ठिकाना बना लेती हैं और चुपके चुपके पढ़ने के अंदाज़ का तो कहना ही क्या।

0: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल।

तक के सफर में रंगे महफिल सुन रहे हैं आप नविता के साथ। जिंदगी को समझना है तो इश्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी प्रेम की कहानी है, इसका हर रंग मोहब्बत का रंग है। क्योंकि जब आप मोहब्बत में होते हैं तो जिंदगी सबसे खूबसूरत होती है।

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मोहब्बत मिली तो नींद भी अपनी न रही, मोहब्बत मिली तो नींद भी अपनी न रही, गुमनाम जिंदगी थी तो कितना सुकून था। रंगे महफिल सुन रहे हैं आप नविता के साथ।

रिश्तों में गलतफहमियां जगह बना लें तो दिल टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, बेवफाई का इल्ज़ाम लगता है।

0: एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द आते हैं।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM Rainbow के साथ, दिल से दिल तक।

आइए सुनते हैं एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल

यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लंबी दूरी की कार्रवाई का हिस्सा बताया। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 का पहला मैच टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा और मोरक्को के बीच जारी, और आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 12:03 और 16 सेकंड का, और श्रोताओं ये समय है कार्यक्रम जीरो आर शो का।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आपकी वाणी आकाशवाणी 12:35 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल कार्यक्रम जीरो आर शो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आइए सुनते हैं एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी गरिमा गुप्ता ने कहा कि राज्य की मतदाता सूची में किसी भी विदेशी नागरिक

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और समय रात्रि के 1 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया।

सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसठ में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लंबी दूरी की कार्यवाही का हिस्सा बताया। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार

जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से रेनबो चैनल एफएम रेनबो और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 2:58 हुए हैं। ठीक 3 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटस्टर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार यात्रा तेहरान से शुरू हुई। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एक और अन्य मुकाबले में पेराग्वे और फ्रांस के बीच मैच जारी। 5 मैचों के T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

इसकी भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सारंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार यात्रा तेहरान से शुरू हुई। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 4:03:27 का, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारे गामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। सुबह के 4:25 और 18 सेकंड, कार्यक्रम सारेगामा।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आपकी वाणी आकाशवाणी। सुबह के 4:36 और 57 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल कार्यक्रम सारे गामा।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार यात्रा तेहरान से शुरू हुई। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। सुबह के 5:03 और श्रोताओं, ये समय है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना का।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। सुबह के 5:14 और 46 सेकंड, कार्यक्रम आराधना।